فيها

ईरान जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई अज हुर्म हज़रत मासूमा में शहीद आयतुल्लाह खामनाई जी ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत कंदो। ताज़ियती इज्तिमा मगरिब ऐं इशा जी नमाज़ बाद थींदो। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराक़ी जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां टेलीफोनिक राब्तो। खिते जी ताज़ी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। ईरानी परदेही वज़ारत मूजिबि ईरानी परदेही वज़ीर अमेरिकी हमलनि जी मज़म्मत कई। अमेरिका हिकु भेरो ॿीहर ईरान ते शुरू करे छॾिया। टे ॾींहं बि लॻातार बमबारीअ जो सिलसिलो जारी। ईरान जा शहर कोनार्क जो दादक बोशहर ऐं बंदर अब्बास धमाकनि सां गूंजी उथिया। परॾेही ख़बरू इदारे मूजिबि बोशहर ऐं चौदाक में 6 धमाकनि जा आवाज़ ॿुधा विया। कोनार्क शहर में 3 धमाका थिया। बंदर अब्बास में बि ज़ोरदार धमाका ॿुधा विया। अमेरिकी हमलनि बाद ईरान जा अमेरिकी अॾनि ते जवाबी हमला। ईरानी मीडिया जो चवणु आहे त कतर, बहरीन ऐं कुवैत में अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। मुल्क में थींदड़ दहशतगर्दीअ में ओभर वारो पाड़ेसी मुल्क मुलविस आहे। दहशतगर्दीअ में अफ़गान सरज़मीन इस्तेमालु थी रही आहे। सभई गॾिजी फितने खे ख़तमु कंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो कोयटा में नेशनल इलेक्शन प्लान जी सूबाई एपेक्स कमेटीअ जे इजलास खे ख़िताब। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बलूचिस्तान जे गवर्नर ऐं वॾे वज़ीर समेत ॿियनि इख़्तियारनि जी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ खे बलूचिस्तान जे सिक्योरिटी सूरतहाल ऐं दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन ते ब्रीफिंग ॾिनी वई। इजलास खे ख़िताब कंदे शहबाज़ शरीफ़ चयो त वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ इजलास खे ख़िताब कंदे चयो त बलूचिस्तान में आख़िरी दहशतगर्द जे ख़ात्मे ताईं दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग जारी रहंदी। पाकिस्तान जे हथियार बंद फ़ौज जे आफ़िसरनि ऐं जवाननि मुल्क जे दिफ़ा लाइ लाज़वाल क़ुर्बानीूं ॾिनियूं आहिनि। सियासी ऐं अस्करी क़यादत जो अहम अज़म आहे त असांखे मुल्क मां दहशतगर्दी जो ख़ात्मो करणो आहे ऐं दहशतगर्दी जे फितरे जे मुकमिल ख़ात्मे लाइ समूरा वसीला क़दम आंदा वेंदा। भारत सिंतास मुआहिदो फौरी तौर बहाल करे पाणीअ खे हथियार तौर इस्तेमाल करण आलमी कानून जी भञकड़ी आहे। नायब वज़ीर आज़म एसाब डार जी किरोशीन परॾेही वज़ीर सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसाब डार चयो त ईरान इसराइल छिकताण घटाइण लाइ पाकिस्तान किरदार अदा कयो ऐं क्रोशिया सां ॿतरफ़ी वापार जी आजियां कयूं था। क्रोशीन परॾेही वज़ीर चयो त ॿिन्ही मुल्कनि जा लाॻापा गॾियल एतराम एतमाद जी बुनियाद ते ॿधल आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि सहकार जा नवां मौक़िया ॻोल्हण ते बि इतफ़ाक़ कयो आहे।

0: कोट भरसा नारे जा बिरादरी जे बिंदुरिन में संगावती तकरार तां झेड़ो फायरिंग में हिक ही घर जे चइनि भातियुनि समेत पंज ॼणा क़तल हिक ॿारड़े समेत ॿ ॼणा ज़ख़्मी कचे जे फेज़ मोहम्मद वारे इलाइक़े में झेड़े दौरान गोलियूं लॻण सबबि हिक ई घर जो फतेह मोहम्मद संदसि पुटु राजा भाइटी राबिया ऐं भेण जीजा क़तल थी वियूं गोलियूं लॻण सबबि सोराब नारे जो बि मारिजी वियो मारिजी वियलनि जा लाश ऐं ज़ख़्मी ईदन नारे जो ऐं ॿारड़ो अली रज़ा नारे जो इस्पताल मुंतकिल धुरिन में चिकताण बरकरार वरे वज़ीर ऐं सूबाई घरू वज़ीर पारां वाक़े जो नोटिस वठी रिपोर्ट तलब करे वरिती
1: हमारी जमीनों पर ट्रैक्टर चल रहे थे जिस पर इन वैशियों कातलों दरिंदों मुर्तजा चांडे चिकंदर चांडे तकरीबन 10 हथियारबंदों ने अंधाधुंध फायरिंग करके ट्रिपल मर्डर केस के मशीन रियाज चांडियो मेरे कजन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मैं सवाल करती हूँ सबका जिम्मेदार कौन है। मैं आईजी साहब से अपील करती हूँ, मैं हायर अथॉरिटीज से अपील करती हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करती हूँ कि हम कानून और आइन के आस्ते एक जंग लड़ रहे हैं और पहले भी हमने अपने तीन प्यारों के जनाजे उठाए, आज मेरे नौजवान कजन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस सबका जिम्मेदार कौन है? सिंध पुलिस का इसमें मनफी रवैया, सिंध पुलिस का इसमें कमजारी वाला रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा। आईजी साहब से गुजारिश करती हूँ कि इस पर नजरसानी करें और स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर कातलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस मामले को रोका जाए। हमारी जानों को खतरा है। हमारे गाँव में आज फायरिंग करके हमारे नौजवान कजन को कत्ल कर दिया गया।
0: मेहर भरसां चांडिया बिरादरी जे ॿिनि धुरिन में झेड़े दौरान उमेर बाब चांडियो जो नौजवान सोट कतल टीड़े कतल केस मां बरी थियल जवाबदार मुर्तज़ा चांडियो समेत 12 जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल। उमेर बाब चांडियो चयो आहे त टीड़े कतल केस जी अपील करण ते चोथों माण्हू कतल कयो वियो। मुर्तज़ा चांडियो सिकंदर चांडियो ऐं ॿियनि ज़मीन ते कमु कंदड़ सोट रियाज़ खे कतल कयो आहे। जवाबदार सम्झनि था त टीड़े कतल केस मां बरी थियण बाद कानून खे कुझु नथो करे सघे। कतल थियल रियाज़ चांडियो जे भाउ अहसान चांडियो जी फरियाद ते मुर्तज़ा चांडियो अब्दुल सत्तार चांडियो सिकंदर चांडियो ऐं ज़ुल्फ़िकार चांडियो समेत 12 जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल। पुलिस 4 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो।

महाराज यूनिवर्सिटी में सियासी जमात जे कारकुनन जो सिंधी शोबे जे शागिर्दन उस्तादन ते हमलो केतरा ही जख्मी थी पया इतलाते पुलिस पहुंची वही हमलो कंदड़ जवाबदार फरार शागिर्दन जो चवण है ते सियासी जमात जे कारकुनन सिंधी शोबे में दाखिल थी हमलो कयो जवाबदारन के फौरी तौर गिरफ्तार कयो वञे शागिर्द नज़ीर जलबाणी जी।

अॼु जो समय न अॼु प्रोग्राम रोशन सुबुह में को बि सवाल कोन्हे, का बि गुजारत कोन्हे, तव्हां पंहिंजा नाला लिखाए सघो था असांजे इनबॉक्स में ऐं मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदव, उते तव्हां LR खे लिखी स्पेस ॾींदव।

0: पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो लिखी ट्रिपल एट वन ते तव्हां सेंड कंदो ऐं तव्हां फेसबुक जे एड जो नालो
1: दोस्तनि जा नाला अवां ताईं पहुचाईंदासीं. ॻोठ मोल ॾिनो माशी लॻे वॾनि वारनि खां. ज़मीर हुसैन सोलंगी, मुख़्तार अली सोलंगी, ज़ेर अब्बास सोलंगी ऐं नंढड़ो वफ़ा हुसैन सोलंगी. ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर, शोएब अली ऐं गुलाम रसूल कुंभर. ॻोठ सूजतुनि खां मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद ऐं नसरुल्लाह जतोई. ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो, मोहसिन अकबर, अहसन अकबर, फहद अकबर, अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो. ऐं ॻोठ छुटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी, अकबर खान मक्सी, नारा स्टाप लॻ सब्ज़ी मंडी सखर खां एजाज़ अली जुणे जो, मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जुणे जो, यारमंद करोड़ा कॉलोनी लाड़े खां फ़ौजी इरशाद महेसर, फ़क़ीर एजाज़ अली कलड़ो, डॉक्टर रिज़वान अली कलड़ो, माजिद अली जतोई ऐं निसार अली जतोई. ऐं ॻोठ हरसा जी गढ़ी कोरकड़नि खां सूमर फ़क़ीर कोरकड़

کجا چه رسید گفت همه مشهد و رضا همه ظاهران عاشقان

0: 10:15 a.m. This time, chips on.
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध।

अजीज समय प्रोग्राम रोशन सुबह में वापस अची चुका आयो आए मां जो मेजबान ने मतलब जुड़े जो समझा अखियों जेकी कुछ दिसन थियो तन के कबूल कन थियो या रद्द ज़हन कंदो आहे असांजी पूरी हयाती में के शयूं अहिड़ियूं बि साम्हूं ईंदियूं आहिनि जिन खे कल्ह पसंदि कयो वियो या सुहिणियूं लॻंदियूं हुयूं से अॼु नथियूं वणनि ऐं कल्ह जेके शयूं असांखे सुहिणियूं न पई लॻियूं से अॼु ख़ूबसूरत छो पियूं लॻनि इन ई सुवाल जो जवाबु ही थी सघे थो त ॾिसण वक़्तु ज़हन जी कैफ़ियत कहिड़े क़िस्म जी आहे हूअं बि कंहिं ॾाहे जो चवणु आहे त ख़ूबसूरती इंसान जे अंदर में मौजूदु हूंदी आहे उन में को बि शक नाहे छो त जॾहिं इंसान जे ज़हन में ख़्याल सुठा हूंदा त संसार बि सुठो लॻंदो आहे हिन संसार में अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जेकी हर शइ में सूंहं खे ॾिसंदा आहिनि ऐं कख हुजे पन हुजे हर हिक में सूंहं जो जलवो ॾिसनि था जॾहिं हर शइ में सूंहं जी समुझ अची वञे थी त पोइ दिलि बि हरदमि ख़ुशि रहंदी आहे पोइ चहिरो भले मासूम छो न हुजे त उनखे चवंदा आहिनि त ॾिसण जूं अखियूं पंहिंजियूं आहिनि ऐं चवंदा आहिनि त सिक बि हुजे ऐं सॼण न मिले इहा सॼी ॻाल्हि आहे अखियुनि जी

जी समय न गाल कंदासी रात जे वक्त अवां अंगण ते जॾहिं सुम्हंदा आहियो त आसमान ते सितारनि जी सूंहं में चंड खे अवां ॾिसंदा आहियो। यकीनन उन वक़्तु अवां चंड बाबति कुझु न कुझु सोचींदा ज़रूरु हूंदव त चंड असल में आहे छा। मां तव्हांखे थोरी साइंस जे हवाले सां चंड जे बारे में अवां ताईं मालूमात पहुचाईंदुसि त साइंस था चवनि था त चंड जो ॾींहुं राति ज़मीन जे ॾींहुं राति खां 14 दफ़ा वॾो आहे ऐं चंड ते ज़मीन जो पाशो मुकमिल चंड ग्रहण वक़्तु पवंदो आहे ऐं चंड ज़मीन जे चौधारी चकर ॾियण वक़्तु 2000 मैल फी कलाक जी रफ़्तार सां हले थो ऐं चंड ज़मीन जे चौधारी 27 ॾींहं 7 कलाक ऐं 43 मिंटनि में हिकु भेरो चकर ॾिए थो। साल में 13 भेरा चकर ॾींदो आहे ऐं चंड ऐं सिज विच में 9,27,72,000 मुफ़ासिलो आहे। चंड ज़मीन खां बि ज़मीन खां 2,29,857 मैल परे आहे ऐं चंड जो क़तर बि 2,160 मील आहे ऐं चंड जी रोशनी 1.33 सेकंडनि में धरतीअ ते पहुचे थी। त समीन पंहिंजो अवां ताईं चंड जे बारे में कुझु मालूमात पहुचाएसीं पर शमन अमीर अली चंड जे हवाले सां कहिड़ी ॻाल्हि पियो करे गॾिजी पिया ॿुधऊं।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: साईं कुछ खबर अथव
3: छा थियो सोणी
2: बिंडियन खां सोलर वारी बैटरी खराब थी पई आहे नई बैटरी कदे आणींदा
3: सोणी हिन महंगाई जे दौर में नई बैटरी जी जरूरत ई कोने पंहिंजी पुराणी बैटरी सरगोदा बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओं करे छॾींदा
2: साईं पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी
3: न न सोणी सरगोदा बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि बैटरीअ जी
2: वाह वाह पोइ साईं जल्दी करियो हाणी वञो ऐं बैटरी ठाराए अचो
3: सरगोदा बैटरी

0: लग घंटी अड़कानो टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 8 बजे ताई आचर ते सुबह जो ॾहें बजे खां शाम जो 3 बजे ताईं ऐं छंछर ते क्लिनिक बंदि रहंदी। राब्ते जे लाइ मोबाइल नंबर 03158794117 ऐं 0333754061। ख़ुशख़बरी, लाड़काणे शहर जो मशहूर ऐं मेडिकल जे दुनिया जो वॾो नालो डॉक्टर असदुल्ला महर MBBS FCPS गोल्ड मेडलिस्ट सीनियर कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन। हिते हॾनि ऐं जोड़नि जो सूर, कुन रॻ जो सूर, वाई ऐं चेल जो सूर, वॾी उमिरि जे माण्हुनि ऐं नंढनि ॿारनि में हॾनि ऐं जोड़नि जा मसाला, फ्रैक्चर, फिरियल पेरनि ऐं जंगुनि खे ठीकु करणु ऐं जोड़नि जे हर क़िस्म जो ऑपरेशन जदीद मशीनुनि ज़रिए कयो वेंदो आहे। डॉक्टर असदुल्ला महर, हॾनि ऐं जोड़नि जो माहिर सर्जन। टाइम आचर खां जुमो रोज़ानो सुबुह जो 11 बजे खां राति जो 8 बजे ताईं एड्रेस बैतुल शफ़ा बोन ट्रामा क्लिनिक लग नौदेरो चौक लाड़काणो। यादि रखंदा, डॉक्टर साहब हर छंछर ते सखर शहर में मरीज़नि जो मुआइनो कंदा आहिनि। एड्रेस सखर टाउनशिप आरिफ बिल्डर्स बंगलो नंबर 20 सेक्टर नंबर 3 घोड़ा गेट सखर। टाइम मंझंदि जो 2 बजे खां शाम जो 6 बजे ताईं। वधीक राब्ते जे लाइ मोबाइल नंबर 0333668640025 ऐं फोन नंबर 0744057199।
1: अदी ॾिसो त ॾे, मुंहिंजी नुंहुं खे औलादी कोन थी थिए।
2: भेण, डॉक्टर सुमेरा बिरोही खां पंहिंजी नियाणी जो इलाज करायोसीं। हाणे मुंहिंजी नियाणी औलाद वारी आहे।
0: ख़ुशख़बरी, औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर सुमेरा बिरोही MBBS FCPS कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन शेख जैद विमेन हॉस्पिटल लाड़काणो। माहिर अमराज नॉर्मल डिलीवरी, सीज़र ऑपरेशन, औरतुनि में अंडेदानी, बच्चेदानी, रसोलियुनि जो इलाज ऐं ऑपरेशन।

जी साईं जा प्रोग्राम रोशन सुबह में वापस चुका आहियूं ऐं पाण ॻाल्हि कंदासीं इश्क जी। त ज़रूरी न आहे त इश्क जेको आहे सो कंहिंसां बि थी सघे थो, कॾहिं बि थी सघे थो, ऐं इश्क जी गहराई में पाण जेको आहे सो नाहियूं वेंदा। हक़ीक़त में हक़ीक़ी इश्क उहो खोरो आहे जंहिंमें सवाइ बाहि भरण जे ॿियो कुझु बि नाहे थींदो। जितां बाहि जा ओला बबड़ करे निकिरंदा आहिनि, जिते सिर्फ़ ई सिर्फ़ तपश ऐं ताब हूंदो आहे। इश्क जॾहिं बि जंहिं वटि आयो आहे, तंहिंजी हस्ती, तंहिंजो वजूद, तंहिंजी दुनिया में तंहिंजी ज़िंदगी बदिलजी वेंदी आहे। बसि पोइ इश्क जा ओला अंदर में मच मचाए छॾींदा आहिनि। इश्क त उहो रस्तो आहे जंहिं ते हलंदे सवाइ ॾुखनि जे ॿियो कुझु बि नाहे मिलंदो। पर बावजूद उन्हनि सभिनी कैफ़ियतुनि जे ऐं मंज़रनि, इश्क जो नतीजो ॾाढो वणंदड़ थींदो आहे। अंदर में इश्क जॾहिं पची रास थींदो आहे, तॾहिं समूरो इंसान हिकु अखि बणिजी पवंदो आहे ऐं समूरी दुनिया हुन जे अॻियां पधरी पट वांगुरु थी पवंदी आहे ऐं समूरा लिकल लिकाव साम्हूं अची वेंदा आहिनि। तॾहिं चवंदा आहिनि त आशिक़ मजबूर आहे भले केॾो बि कंधार हुजे।

जी सभिन प्रोग्राम रोशन सुबह में अवां दोस्तन जा नाला खणंदासीं जिन महिनत करे इनबॉक्स में कुझु दोस्तन नाला मोकिलिया आहिनि फेसबुक ते बि ऐं लाइव कॉल ज़रिए बि दोस्तनि जा नाला अवां ताईं पहुचाईंदा हलंदासीं ऐं नाला आहिनि अज़ीज़ सोलंगी भुट्टो सोलंगी उन्हनि सां गॾु आहे नूर मोहम्मद सोलंगी ऐं नूर अहमद सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां भाइरनि जी वॾी महिरबानी मोहम्मद अज़ीज़ जरवार वसीम जरवार बि मीरपुर ख़ासि खां फ़ोन कई आहे ऐं खालिक लाशारी बि भाउ मीरपुर ख़ासि खां ऐं चनेसर भेण आज़ाद भेण मोरे खां बरकत अली सांगी हैदरी सदाकत अली सांगी ॻोठ विकिया सांगी लॻ धामरान खां शहज़ादो रिंद ॻोठ खां ऐं सुहारो शाह खां इमदाद जतोई खालिक जतोई मुबशिर किफ़ायतुल्ला फारूक हैदर जतोई दादू खां भाइरनि जी वॾी महिरबानी आसिफ़ पहमर ऐं शबीर पहमर उनर चौक लाड़काणे खां ऐं रिहाना ख़ान बखर खां हाफिज़ मोहम्मद हनीफ़ रिंद जीअंद रिंद जेकाबाद खां राशिद आवाण मेरापुर खां फ़ोन कई भाउ जी वॾी महिरबानी क़ुर्बान अली ख़ासि किली ॻोठ झंडो मरी खां ऐं झंडे मरी खां पोड़ो मरी बि फ़ोन कई फ़क़ीर मरम अली जतोई ॻोठु आगा ख़ान जतोई खां यासमीन मलक मीरपुर ख़ासि खां मोहम्मद इब्राहिम संदीलो ॻोठ खां मोहम्मद हारून संदीलो मोरो खां ऐं फ़तेह मोहम्मद कनासरो फारूक अहमद फराज़ अहमद कनासरो बेबी शुगफ्ता नाज़ कनासरो ॻोठु सराई मोहम्मद नवाज़ धूण खां ऐं राजन कोरी लालचंद कोरी ॻोठ खां ऐं असमा अमीरपुर ख़ासि खां मोहम्मद शरीफ़ भुट्टो नादर भुट्टो बलोचिस्तान खां ऐं ॻोठु मोहम्मद मूसा बालादी खां शमीर बालादी आरिफ़ बालादी एजाज़ बालादी मेवो ख़ान ऐं रज़ा बालादी ऐं भाउ जमाल कुंभार बि फेसबुक ते मैसेज कयो भाउ जी वॾी महिरबानी ऐं ज़ाकिर चांडियो लाड़काणे खां त सभिनि ख़ूबसूरत नगमो आहे अव्हां दोस्तनि जी नाम

जी असमैन नाहिद अख्तर जे इन ख़ूबसूरत कलाम ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते। हयाती रही तव्हां सां मुलाक़ात ज़रूरु थींदी ते असीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमतुल्लाह जुणे जो खे ॾींदा इजाज़त अलाह निकाह।

0: It's 11 a.m. This line check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, varam fauri khatam. Aaj hi kareebi store se naam lekar talab kare.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: क्या ईरान जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खमदाई शहीद आयतुल्लाह खमदाई जी ताजियती मिड़ाके में शिरकत कंदो ताजियती मिड़ाको मगरिब ऐशा जे नमाज़ बाद थींदो

मर जाए पुलिस मौजूद गुजी इतला गडियल ऑपरेशन ऑपरेशन के नतीजे में मार दहशतगर्द केतर ही पुलिस ऑफिसर की शहादत में मुलविस हुआ जांच जारी है।

0: श्री गुलाम शाह पे जो सखर और टांग जातल शख्स जो लाश अत अस्पताल मुंतकिल सखर शिकारपुर तां मंगी फ्लोर बिल लगन जातल शख्स जो लाश मिलियो तला ते लखी गुलाम शाह पुलिस वाकई वारे अंदर पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल कयो पुलिस बुधायो त लाश आईस जी मवाली जो लगे पियो वधीक जांच करूं पिया
1: कंबर वेझो ऑटो के दुकान के बाहे लखे रुपये जो सामान सड़ी वो भुट्टो चौक से कायम फिदाउस लाखो के दुकान के बाहे लगी वही समूरो सामान खाक सामान पिणी सड़ी वो है नोटिस वी वहार कई वे सड़ी वो है नोटिस वी वहार कई वे
2: आप सुन रहे थे।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

मेरे YouTube चैनल नदीम अब्बास खान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नए आने वाले गीतों को सुनने के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाइए।

0: मेरे यूट्यूब चैनल नदीम अब्बास खान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नए आने वाले गीतों को सुनने के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाइए।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज।

पुनल पाए जरा मुझा फकीरन हाल चाहिए सिकंदर।

जी सिक समर रेला रोई रत जा कई पानी कुल पत्थर कुडंदी वने के चले लायू धुम धचर हाने भी गस पजो वर आबोड़ी दस वनी वण कार मिया पर बेनी बारो चलने हन घुम दे कयम घूर दुखो देर कयू व्या मारी ते मजकूर कयाई इश्क बोरा वो अग मिए साण खयाई सूर सिकत सावल यार जे में कढ अंदर मंझ अंगूर हाने रा

جبل کے جھکا آدھی رات اٹھی وجا ہوں بار بدھی بک

0: थई पुनल पाए फेरो मुंजा फकीरणा हाल थई
1: ओ मुंजा सनेहा तो खे मिला या न थई मिला जान

साहली हो त भलो चडे पलीन कजे पल इश्क त आरिय जा मजे कयसरी सिराई सल अची जागिस जी में झोराणा ऐ झल हिकड़ी आसान हक लही थी पण के पुरजा करे जादू लगस जी में साबित सते दी सूरन शाखू कढियो निसरी बीठ दुनी अची उलट आब अखन में जिया बरसे सावण मीह।

害之人。

पुन्हा कसा ते चुप्यो घट घेर जानिय कान जबल में आ पिथुम कंदस पेर नमर करे वे मिडेर वठी गुल गरीब जो नाए डी हनी गर जो अची झोरी पेरस जी इश्क अनागो अदियू रखे न कजोरी हित तनका सहेली साण हुयम में न को माओ न पी परवश कंद में पंध में कादर रब कवी साह सब

سن پریئے جے آن گجز پریئے کے تو تو لہی سجا جے مانیا

ਨਾ ਲਾਏ ਫੇਰ ਉਹ ਮੁਜਾ ਫਕੀਰ।

ਫਕੀਰਾਂ ਹਾਲਤ ਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਹਾਲਤ ਹੀ।

0: ईरान जो शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई जो मड़ मस्जिद में मिट्टी माओ हवाले शहीद अली खमनाई के इमाम अली रज़ा जे रोज़े जे आते में मिट्टी माओ हवाले कयो वियो जनाज़े नमाज़ न सपुट आयतुल्लाह मुस्तफ़ा खमनाई पढ़ाई शहीद जी तदफीन में हज़ारे माण्हू शरीक थिया ईरान जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुस्तफ़ा खमनाई शहीद आयतुल्लाह खमनाई जी ताज़िराको मगरब
1: अमेरिका ईरान जी कवे ते हमलन बाद पाकिस्तान समेत बेन साल्स मुल्कन सब सफारती कोशिशूं तेज करे छॾियो अमेरिकी न्यूज वेबसाइट साल्स मुल्क अमेरिका ईरान छिकताण घटाइण एटमी प्रोग्राम ते ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ कोशिशूं करे रहिया आहिनि ॿिन्ही मुल्कनि जे नुमाइंदनि अमेरिकी ऐं ईरानी इख़्तियारनि सां बि ॻाल्हायो आहे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान सां मुकमिल जंग जो हामी नाहे
0: अमरीका पारां ट्रेनीअ पर ईरान ते बमबारी ईरानी शहर कोनाक चौगादक बोसर ऐं बंदर अब्बास ते मिज़ाइल हमला ईरान जा अमरीकेडनि ते जवाबी हमला जारी आहिनि ईरानी मीडिया जो चवणु आहे त कतर बहरीन ऐं कुवैत में अमरीकेडनि खे

0: ईरान सां टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। मसइले जे सिफारती हल लाइ पुरज़म आहियूं, अमेरिकी अमलदारनि जी दावा आहे। अमेरिकी मौजूदु तेहरान ऐं वॉशिंगटन में टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। अमेरिका जो मौक़िफ़ वाज़े आहे, ईरान एटमी हथियार न रखंदो।
1: केपी जिला के कुहाट में पुलिस जो कानून लागू करने इदारन सां गॾु ऑपरेशन, चार दहशतगर्द मारिजी विया। पुलिस मूजिब गुजरात लाइ गॾियल ऑपरेशन कयो वियो। ऑपरेशन जे नतीजे में मारिजी वियल दहशतगर्द केतिरनि ई पुलिस ऑफिसरनि जी शहादत में घुर्बल हुआ। वधीक जांच जारी आहे।
0: कंडियारो भरसां हथियारबंदनि जी फायरिंग में ज़ख़्मी थियल वापारी नवाब शाह इस्पताल में दम धणी हवाले। वटि गोलियूं लाइण ॼातल शख़्स जो लाश हथ इस्पताल मुंतकिल। पुलिस चयो आहे त लाश आइस जे मवाली जो लॻी रहियो आहे। पीर ॻोठ भरसां बे नौजवान जो लाश हथ आयो आहे। पुलिस मौजूदु फोती जी सुञाणप अब्दुल रहमान कलोड़ जे नाले सां थी आहे। संदसि खीसे मां नशे वारियूं शयूं मिलियूं आहिनि।
1: रॉबर्ट सां छेड़े में कतल थियल पंज ॼणनि जा लाश पुलिस वाटसन खे न ॾिना। सर्द खाने में पियल वोडिसाक नारेजो में मारिजी पियल फतेह मोहम्मद राजा नारेजो ऐं ॿिनि जी तदफ़ीन न थी सघी। इंतिज़ामिया ॿिनि औरतुनि समेत पंज ॼणनि जा लाश सिविल अस्पताल जे सर्द खाने में रखाए छॾिया। वाटसन मूजिबि पुलिस लाश ॾियण खां इनकारी आहे।
2: रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज।
4: जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: तू तो मेरा फैन। वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
2: डाडू सुठो
1: GFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: ईरान सां टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। मसइले जो सफ़ारती हल लाइ पुरज़मान हूं अमरीकी अमलदारनि जी दावा। अमरीकी परडी मीडिया मूजिबि तेहरान ऐं वाशिंगटन में टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। अमरीका जो मौक़िफ़ वाज़े आहे त ईरान एटमी हथियार न रखंदो। अमरीका जो टे ॾींहं ईरान ते बमबारी। ईरानी शहर कोनार्क, चौगदाग, बक्सर, बंदर अब्बास ते मिज़ाइल हमला कया विया। ईरान जा ॿ अमरीकी अॾनि ते जवाबी हमला जारी। ईरानी मीडिया चवण आहे त कतर, बहरीन ऐं कुवैत में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो।
1: अमेरिका ईरान जे कवेते हमलनि बाद पाकिस्तान समेत ॿियनि साक्स मुल्कनि सफ़ारती कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्ज़ेप्स मौजूदु पाकिस्तान ऐं कतर समेत साक्स मुल्क अमेरिका ईरान छिकताण घटाइण ऐं एटमी प्रोग्राम ते ॻाल्हियुनि जी बहालीअ लाइ कोशिशूं करे रहिया आहियूं। ॿिन्ही मुल्कनि जे नुमाइंदनि अमेरिकी ऐं ईरानी इख़्तियारनि सां बि ॻाल्हायो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बि ईरान सां मुकमिल जंग जो हामी नाहे।

गडियल अभिवादन के अमरीका से सहकार की कीमत अदा करनी पवी ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी की मेंबर इस्माइल कोसरी है यूएई पैं कदम से पान के ईरान के दुश्मन वाली फेहरिस्त में शामिल कर छो है यूएई के ईरान के दुश्मन से गड़ बीहण की गरी रकम गरी कीमत अदा करनी पवी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पहचो शहर पहचो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
2: जीए एफएम 90.8।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

शहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: शहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 3:15 PM.
2: This time check is brought to you by
0: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
0: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

देखिए नया ड्रामा सीरियल खुदा गवाह बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: है ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए राज़े उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो GFM 90.8।

पीएसटी ऐं जीएसटी वेटिंग रूम जो फैसलो पीएसटी ऐं जीएसटी बाबति अदालती फैसले ते कानूनी मुशावरत कई वेंदी। स्पीकर अवेश कादर शाह सदरत हेठि इजलास। स्पीकर अवेश कादर शाह चयो जूनियर साइंस टीचर लाइ 55% मार्कूं खणी समूरनि जो उमेदवारनि खे भर्ती करण जो फैसलो थियो आहे। अर्ली चाइल्ड टीचर जे टेस्ट पास कंदड़ 500 छोकिरियुनि खे 15 ॾींहनि अंदरि ऑफर लेटर ॾिना वेंदा। जीएसटी ऐं पीएसटी लाइ अदालती फैसले बाबति कानूनी वर्कात सां मुशावरत कई वेंदी। सरदार शाह चयो त तालीम

0: रुगो रोज़गार जो ज़रियो नाहे, 55 खां वधीक मार्कूं खणंदड़नि खे साइंस टीचर भर्ती करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। कामेटी पारां तालीम खाते खे ॿुधण ते थोरायतो आहियां।
1: ईरान सां टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। मसइले जे सिफारती हल लाइ पुरज़म आहियूं, अमेरिकी अमलदारनि जे दावा। अमेरिकी परॾेही मीडिया मौजूदु तेहरान ऐं वॉशिंगटन में टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। अमेरिका जो मौक़िफ़ वाज़े आहे, ईरान एटमी हथियार न रखंदो।
0: अमेरिका जे 3 ॾींहं ईरान ते बमबारी। ईरानी शहर कुणाक चौगादश बसर बदर अब्बास ते मिज़ाइल हमला। ईरानी मीडिया चवण आहे त कतर, बहरीन ऐं कुवैत में अमरीकेरनि खे निशानो बणायो वियो।
1: अमेरिका ऐं ईरान जे हिक ॿिए ते हमलनि बाद पाकिस्तान समेत ॿियनि साल्स मुल्कनि सिफारती कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं आहिनि। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्ज़िप्स मौजूदु पाकिस्तान ऐं कतर समेत साल्स मुल्क अमेरिका ईरान छिकताण घटाइण एटमी प्रोग्राम ते ॻाल्हियुनि जी बहालीअ लाइ कोशिशूं करे रहिया आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि जे नुमाइंदनि अमेरिकी ऐं ईरानी इख़्तियारियुनि सां बि ॻाल्हायो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बि ईरान सां मुकमिल जंग जो हामी न आहे।
0: गॾियल रफ़ई मर्दनि खे अमरीका सां सहकार जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। ईरानी पार्लियामेंट जी क़ौमी सलामती कमेटी जे मेंबर इस्माइल कोसरी चयो आहे त यूएई पंहिंजे क़दमनि सां पाण खे ईरान जे दुश्मन वारी फ़हिरिस्त में शामिल करे छॾियो आहे। यूएई खे ईरान जे दुश्मन सां गॾु बीहण जी घणी क़ीमत अदा करणी पवंदी।
1: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सां गिलगित बल्तिस्तान जे नून लीगी असेंबली मेंबर्स जी मुलाक़ात। वज़ीर-ए-आज़म जे लीगी मेंबर्स खे JEB जा मसला हल करण जी ख़ातिरी। शहबाज शरीफ चयो त गिलगित बल्तिस्तान जी अवाम सदाई पाकिस्तान सां वफ़ादारीअ जो अमली सबूत ॾिनो। गिलगित बल्तिस्तान जे तामीर ऐं तरक़ी अवलीन तर्जनि में शामिल आहे।
0: गैर क़ानूनी अदावतनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो अख़्तियार बुनियादी तौर ते सूबाई हुकूमत जो आहे, अदलिया जो न आहे। अदालतूं पंहिंजे साम्हूं मौजूदु तकरार ताईं रहनि, गैर ज़रूरी मामलनि में मुदाख़लत न कनि। वफ़ाक़ी आइनी अदालत नसला टावर खे ढाहिण जो सबबु बणजंदड़ सुप्रीम कोर्ट जा हुकुम वापसि वठी छॾिया। आइनी अदालत फ़ैसिले में चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट दायरे खां अॻिते वधी वॾा हुकम जारी कया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जी रिपोर्ट्स ते क़ानूनी घुर्जूं पूरियूं करणु बिना ढाहिण जा हुकुम नथा ॾेई सघजनि। हर क़िस्म जी मुनसफ़ानी कार्रवाई सभिनी जो हक़ आहे। अदालत जो मक़सदु रुगो क़ानून मूजिबि कार्रवाई यकीन बणाइणु आहे।
1: वज़ीर आला हाउस में चौमासे जे वसकारनि ऐं बोर्ड बाबति इजलास। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ऐं NDMA चेयरमैन जे इजलास में शिरकत। सिंध ऐं वफ़ाक में चौमासे जे वसकारनि ऐं बोर्ड खे मुंहुं ॾियण बाबति सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। NDMA ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त 15 जुलाई खां 30 अगस्त ताईं मामूल खां वधीक गर्मी ऐं बरसातनि जो इम्कान आहे। आपाशी वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो चयो त सिंध हुकूमत चौमासे बाबति तयारियूं कयूं आहिनि।
0: वॾनि शहरनि में नाइट पार्टीज़ वारो कल्चर सबबु एड्स पकड़जी रही आहे। सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल जो इंकशाफ़। सीनेट कमेटी खे आगाही ॾींदे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त नाइट पार्टीज़ में ड्रग्स जे इस्तेमालु ऐं नौजवाननि जे जिंसी सरगर्मियुनि सबबु HIV पकड़जी रही आहे।
1: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां 3 ॼणनि जा लाश हथ। कंडियारे में हथियारबंदनि हथां ज़ख़्मी थियल वापारी फोत। हैदराबाद जे इलाइक़े पके किले वेझो नामालूम शख़्स जो लाश हथ सुञाणप न थी सघी। लखी ग़ुलाम शाह वेझो सखर रोड तां 1 ॼणे जो लाश हथ सुञाणप न थी सघी। पीर जो घोट भरिसां बि नौजवान जो लाश मिलियो। सुञाणप अब्दुल रहमान कलोड़ो जे नाले सां थी। कंडियारो भरिसां हथियारबंदनि जी फायरिंग में ज़ख़्मी थियल वापारी नसीर कलोड़ो इस्पताल में फोत। कारण मालूम न थियो।
0: कैबरबट सां जेड़े में क़तल थियल 5 ॼणनि जा लाश पुलिस वारसनि खे न ॾिना। सरहद खाने में पहल गोड इसाक नारेजो में मारिजी वियल फतेह मोहम्मद राजा नारेजो ऐं ॿियनि जी तजवीज़ न थी सघी। इंतिज़ामिया ॿिनि औरतुनि समेत 5 ॼणनि जा लाश सिविल अस्पताल जे सरहद खाने में रखाए छॾिया। जेड़े में मारिजी वियल 5 ॼणनि जा लाश वारसनि खे न मिलण खां अदालत में दरख़्वास्त दाख़िल। अदालत SSP कैबपुर, DSP पीरगोट ऐं SHO फैज़ मोहम्मद बंडू खे अदालत तलब करे वरितो।
1: जो मेरोबाब चांडियो जे सोट जे कतल बाद धुरियुनि में छिकताण। मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पुलिस मुक़रर। धुरियूं पंहिंजनि ॻोठनि ताईं महदूद। वधीक 2 ॼणा गिरफ़्तार।
0: ठठे में कासकेली बिरादरी जे बिंदुनि में जेड़ो 1 ॼणो क़तल, 13 ॼणा गिरफ़्तार। वारसनि जो लाश रखी ॾियणो। आमरी स्टाफ जेड़े दौरान गोली लॻण सबबु फिदा हुसैन कासकेली मारिजी वियो। पुलिस जो चवण आहे त जवाबदार ऐं मक़तूल धुर वारा पाण में माइट आहिनि। कारण मालूम न थी सघियो।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

0: पल दो पल देखिए हर पीर से जुमा रात 9 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वेलकम टू टाइम न्यूज स्टूडियो। यू आर वॉचिंग 5 PM बुलेटिन।
2: मंगी डेम पुलिस स्टेशन से दहशतगर्दी के वाके बाद पाक फौज एफसी है बलोचिस्तान पुलिस जो ऑपरेशन खेबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस जो चवण है 24 कलाक दौरान 13 खारजी जनम भिड़ा कया व्या। 6-7 जुलाई से 26 खारजन के जनम भिड़ो कया व्यो। खुशदार के इलाके जैदी में दहशतगर्दन जो अज सुबह पुलिस स्टेशन से हमलो नाकाम बणाए पो। पाक फौज एफसी के जवानन वक्तायती कार्रवाई जरिए 8 दहशतगर्दन के जनम भिड़ो कयो। 5-6 दहशतगर्दन हेलीकॉप्टर जरिए ऑपरेशन में मारे वो। 5 जुलाई का ऑपरेशन जो बान है बे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमू तौर 75 खारजन के जन्म भेड़ो कह वो है। अमेरिका ईरान विच में शिकताण घट करण गालन की बहाली लाए टाकड़ी कंदड़ मुल्कन कोशिशू तेज कर छ्य। अमरीकी वेबसाइट की रिपोर्ट मुझे पाकिस्तान कतर ए बया इलाकई टाकड़ी कंदड़ मुल्क अमरीका ईरान विच में गाल बहाल कर कोशिशू कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप तरफा जंगबंदी मुफाहमत यादाश खत्म कर ऐलान बावजूद ईरान से मुकमिल जंग में वापस वन का पासो कर रो है। ट्रंप जो ध्यान हरमोज लंग खोलण से खुतल है। ईरानी मीडिया मुजिब परदेही वजीर अब्बास सिराकची फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर तुर्किया ओमान के परदेही वजीर से फोन से राबतों कर मसलन के हल ए चिकताण घटने लाए गड़ी कम कर अहमियत जोर दिनों। अब्बास सिराकची तो ईरान पां दिफा लाए तैयार है। इसराइली वजीर अजम नेतन्याहू है जंग अजा खत्म न थी है जरूरत पी तो ईरान से टों भेरों हमला कर तैयार है। वफाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट जा नेशनल टावर समेत कराची शहर में गैरकानूनी अदावतू डायण जा समूरा हुकुम वापस वी छा। सुप्रीम कोर्ट जो कराची की जमीनों के लागू पाबंदी से बदल हुकुम भी वापस। वफाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो अदालती अख्तियार का मथों करार दे छो। जस्टिस आमिर फारूक 10 सफन से बदल लिखत में फैसलो जारी कर छो। फैसले में चयो है बिल्डिंग कानून सूबाई हुकूमत के अख्तियार वे दायरे में अचन था अदालतों की न। सुप्रीम कोर्ट के सामू लियारी के एक गैरकानूनी तामीर थियल इमारत की अपील बुधनी हेठ हुई। सुप्रीम कोर्ट एक बिल्डिंग जो केस पैया सजी लियारी है सजी कराची शहर तीन पकड़े छो। सुप्रीम कोर्ट आईनी घुर्जू पूरी करण का सवाल अपील में सोमोटो अख्तियार इस्तेमाल किया। रुगो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट से अदावत उठाने जो हुक्म न तो दई सकें। गैरकानूनी अदावतों खिलाफ कार्रवाई लाए कानून अमल दरामद जो तरीकेकार मौजूद है। असल केस लियारी के एक बिल्डिंग जो हो धुरन मुजिब केस अणअसरायतो थी चुको है। वफाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट जा जारी कल समूरा हुकुम वापस वे केस उकलाए छोड़।

सिंध असेंबली जी कमेटी जो 8,000 खां वधीक जूनियर साइंस टीचर्स भर्ती करण जो फ़ैसिलो। पहिरें मरहले में खाली पियल जायुनि ते भर्तियूं कयूं वेंदियूं। अर्ली चाइल्ड हुड टीचर्स जी टेस्ट में 55 मार्कूं हासिलु कंदड़ 580 उमेदवारनि खे 15 ॾींहनि अंदरि ऑफर आर्डर्स ॾियण जो बि फ़ैसिलो। रहिजी वियल उमेदवार ॿीहर IB ज़रिए टेस्ट ॾींदा। PST ऐं JST वेटिंग उमेदवारनि बाबति सिंध हाईकोर्ट जे फ़ैसिले जी रोशनी में IG ऑफिस ऐं कानून वारे खाते खां सिफ़ारिशूं तलब। कमेटी जे चेयरमैन स्पीकर अवेस कादिर शाह चयो आहे त वेटिंग उमेदवारनि बाबति अदालती फ़ैसिले ते IG ऑफिस ऐं कानून खाते खां सिफ़ारिशूं घुराईंदासीं त असां कहिड़ो फ़ैसिलो करे सघूं था। जेसीं ताईं मौक़िफ़ नथो अचे को फ़ैसिलो नथा करे सघूं। अपोज़िशन लीडर अली खुर्शीदी चयो त सुठी ख़बर आई आहे, हुकूमत ऐं अपोज़िशन फ़ैसिलो कयो आहे त सिंध जे नौजवाननि जो भलो थियणु घुरिजे।

एजुकेशन डिपार्टमेंट के तालीम जो जरियो बढ़ाने घुर्जे रोजगार जो न असा के एसईटी साइंस टीचर की जरूरत है। कुल 1200 सीट्स हैं। पंजा मार्कू हासिल कदर समूरन साइंस टीचर्स के भर्ती किया वो रहल उम्मीदवार नवन उम्मीदवार से गुड टेस्ट दियन तालीम वे सूबे वजीर सरदार शाह जो मीडिया से गालू सरदार शाह 97,000 उस्तादन की भर्ती जो अमल 4-5 साल हलो 1,00,000 का वधीक शागिर्द यूनिवर्सिटीज मां डिग्री हासिल कर निकता है। शागिर्द मुतालबो कर रहा है सब नौकरियों पुरान उम्मीदवार के दिनों वेंदू ताड़े वासी असा फैसलो किया है नवन उम्मीदवार के मौको मिले असा के जै उस्तादन की जरूरत है वो मिले।

0: मंचात के समय गिरफ्तार अनमोल और
1: लिव द दुबई लाइफ
0: गजरी थाने ते दाखिल केस की बुधनी थी जेल जरे मुजिब चहन केसेस में चालान शायदन के बयान की कापी जवाबदार औरत पिंकी के फराम कई बुधनी बिन हफ्तन लाए मुलतवी

सिंध हाईकोर्ट जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर जी मुकररी ते स्टे ऑर्डर जारी करे छॾियो। सिंध हुकूमत सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स ऐं जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी खे नोटिस जारी। 6 अगस्त ते जवाब तलब। डॉक्टर फरियाल तरफ़ां जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर जी मुकररीन खे चैलेंज कयो हो। दरख़्वा गुज़ार मूजिबि सिलेक्शन बोर्ड जूं 2 जुलाई 2026 ते कयल सिफारिशूं गैरक़ानूनी ऐं मेरिट जे ख़िलाफ़ आहिनि। कामयाब उम्मीदवार डॉक्टर नाज़िया, डॉक्टर किरण नाज़ ऐं वेटिंग लिस्ट ते मौजूदु डॉक्टर विमला वटि लाज़मी पोस्ट लेवल ते क्लिनिक तजुर्बो नाहे। अदालत केस जी जल्द ॿुधणी जी इस्तदा मंज़ूरु कंदे 6 अगस्त ताईं मुलतवी करे छॾी। कोट मीर मोहम्मद वारे इलाइक़े में मार्जवेल में नौरतुनि समेत 5 ॼणनि जा लाश 24 कलाकनि खां इस्पताल में पियल। पुलिस जो जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी ताईं लाश वारसनि हवाले करण खां इनकार। वारसनि लाश वसूल करण लाइ खैरापुर जी अदालत में पटीशन दाख़िल करे छॾी। अदालत SSP खैरापुर ऐं DSP पीर ॻोठ ऐं SHO खे तलब करे वरितो। हिकु ॾींहुं अॻु ॻोठु इसाक नारे जुमे संगावती मामले तां मामनि ऐं भाणेजनि विच में झेड़ो थी पियो हो। फायरिंग में मसमात जीजा उर्फ़ शहज़ादी, राबिया फतेह मोहम्मद राजा ऐं सोराब नारे जो मारिजी विया हुआ। पुलिस जो चवणु आहे त जेसीं ताईं जवाबदार पेश न थींदा, लाश वारसनि हवाले न कया वेंदा।

ऐं कराची हैदराबाद नवाबशाह ठट्टो सजावल ऐं बदीन खे शहरी बोर्ड जे ख़तरनि वारा ज़िला क़रार ॾिनो वियो। एन डी एम ए जो चवणु आहे त 15 जुलाई खां 30 अगस्त ताईं मूनसून सीज़न जा इम्कान आहिनि। सिंधु दरिया जे आख़िरी हिसे में हुजण सबबि सिंधु बोर्ड जा ख़तरा सबबि सभ खां वधीक मुतासिर थींदड़ सूबो आहे। सिंधु में बोर्ड जा 3 वॾा ज़रिया सिंधु दरिया, किरतड़ जाबलू पटी जा बरसाती वकरा ऐं मूनसून बरसातूं आहिनि। इजलास में कश्मोर, घोटकी, सखर, शिकारपुर, लाटकाणो, दादू, जामछोरो ऐं कंबर शदतकोट समेत हसास ज़िलनि जो जाइज़ो वरितो वियो। वॾे वज़ीर समूरनि खातनि खे मूनसून जे सीज़न दौरान अलर्ट ॾियण जी हिदायत करे छॾी। इजलास में वफ़ाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक, चेयरमैन एन डी ए में, सूबाई वज़ीर जामकान छोरो ऐं ॿियनि शिरकत कई।

0: अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ॾाढो सुठो
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मंगी डैम पुलिस स्टेशन से दहशतगर्दी के वाके बाद पाक फौज एफसी ए बलोचिस्तान पुलिस जो ऑपरेशन शोभान जारी है। सिक्योरिटी जरन जो चवण है तो 24 कलाक दौरान 13 खारजी जनम भेड़ा क्या वह 6-7 जुलाई से 26 खारजन के जनम भेड़ो किया वो हो। खुशदार के इलाके जैदी में दहशतगर्दन जो अज सुबह पुलिस स्टेशन से हमलो नाकाम बनाया वो। पाक फौज एफसी के जवानों वक्तायती कार्रवाई जरिए 8 दहशतगर्दन के जनम भेड़ो किया। 5-6 दहशतगर्दन के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मारे वो। 5 जुलाई का ऑपरेशन शोभान बेन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमू तौर 75 खारजन के जनम भेड़ो किया वो है। अमेरिका ईरान विच में छिकताण घट करण ए गालन जी बाली लाए टाकड़ी कदड़ मुल्कन कोशिशू तेज कर छड़ी। अमेरिकी वेबसाइट जी रिपोर्ट मुजब पाकिस्तान कतर ए बया इलाके टाकड़ी कदड़ मुल्क अमेरिका ईरान विच में गालियों बहाल करण जी कोशिशू कर रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप तरफा जंगबंदी मुफाहमती याददाश्त खत्म करण के ऐलान बावजूद ईरान से मुकम्मल जंग में वापस वन का पासो कर रो है। ट्रंप जो ध्यान हरमोज लंग खुलण से फुतल है। ईरानी मीडिया मुजब परदेही वजीर अब्बास सिराकची फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तुर्क ओमान के परदेही वजीरन से फोन से राबतो कर मसलन के हल ए शिकताण घटने लाए गजी कम कर अहमियत से जोर दिनों। अब्बास सिराकची ईरान पांजे दिफा लाए तैयार है। इसराइली वजीर अजम नेतन्याहू है जंग अजा खत्म न थी आए जरूरत पी त ईरान से टों भेरों हमला कर तैयार आय। वफाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट जा नेसला टावर समेत कराची शहर में गैरकानूनी अदावतू डायण जा समूरा हुकुम वापस वी छा। सुप्रीम कोर्ट जो कराची जी जमीनों जे कन्वर्जन ते लागू पाबंदी ते बदल हुकुम भी वापस। वफाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो अदालती अख्तियार मथा करार दे छो। जस्टिस आमिर फारूक डन सुफान से बदल लिखत में फैसलो जारी कर छो। फैसले में चो है त बिल्डिंग कानूनन सूबाई हुकूमतों के अख्तियार वे दायरे में अचन था अदालतों के न। सुप्रीम कोर्ट के सामू लियारी के एक गैरकानूनी तमीर थियल इमारत की अपील बुधनी हेट हुई। सुप्रीम कोर्ट एक बिल्डिंग जो केस पैं सी लियारी ए सजी कराची शहर ताई पकड़े छो। सुप्रीम कोर्ट आईनी घुर्जू पूरी करण का सवाय अपील में सोमोटो अख्तियार इस्तेमाल किया। रुगो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट से अदावतू डायण जो हुक्म नो दई सकें। गैरकानूनी अदावतों खिलाफ कार्रवाई लाए कानून अमल दरामद जो तरीकेकार मौजूद है। असुल केस लियारी के एक बिल्डिंग जो हो धुरन मुजब केस अण असरायतो थी चुको है। वफाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट जा जारी कल समूरा हुकुम वापस वठंदे केस उकलाए छोड़।

0: सिंध असेंबली जी कमेटी जो 8000 का वधिक जूनियर साइंस टीचर्स भर्ती करण जो फैसलो। पहिरें मरहले में खाली पे जान ते भर्तियूं कई वेंदियूं। अर्ली चाइल्ड हुड टीचर्स जी टेस्ट में 55 मार्कूं हासिल कंदड़ 580 उम्मीदवारनि खे 15 ॾींहनि अंदरि ऑफर आर्डर्स ॾियण जो बि फ़ैसिलो। रहिजी वियल उमेदवार ॿीहर IBA ज़रिए टेस्ट ॾींदा। PST ऐं JST बैटिंग उमेदवारनि बाबति सिंध हाई कोर्ट जे फ़ैसिले जी रोशनी में AG ऑफिस ऐं कानून वारे खाते खां सिफ़ारिश तलब। कमेटी जे चेयरमैन स्पीकर अवेज़ कादिर शाह चयो आहे त बैटिंग उमेदवारनि बाबति अदालती फ़ैसिले ते AG ऑफिस ऐं कानून वारे खाते खां सिफ़ारिशूं घुराईंदासीं त असां कहिड़ो फ़ैसिलो करे सघूं था। जेसी ताईं मौक़िफ़ नथो अचे को फ़ैसिलो नथा करे सघूं। अपोज़िशन लीडर अली खुर्शीद चयो आहे त सुठी ख़बर आहे हुकूमत ऐं अपोज़िशन फ़ैसिलो कयो आहे त संजय न हुजणु घुरिजे। एजुकेशन डिपार्टमेंट खे तालीम जो ज़रियो बणाइणु घुरिजे, रोज़गार जो न। असांखे ACT ऐं साइंस टीचर जी ज़रूरत आहे। कुल 1200 सीट्स आहिनि। 55 मार्कूं हासिलु कंदड़ समूरनि साइंस टीचर्स खे भर्ती कयो वेंदो। रहिजी वियल उमेदवार नवनि उमेदवारनि सां गॾु टेस्ट ॾियनि। तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह जूं मीडिया सां ॻाल्हियूं। सरदार शाह चयो त 97,000 उस्तादनि जी भर्तियुनि जो अमल 4 खां 5 सालनि ताईं हलियो। 1,00,000 खां वधीक शागिर्द यूनिवर्सिटीज़ मां डिग्रियूं हासिलु करे निकिता आहिनि। शागिर्द मुतालबो करे रहिया आहिनि त सभु नौकरियूं पुराणनि उमेदवारनि खे ॾिनियूं वेंदियूं त असां काॾे वेंदासीं। असां फ़ैसिलो कयो आहे त नवनि उमेदवारनि खे मौक़ो मिले ऐं असांखे जंहिं उस्ताद जी ज़रूरत आहे उहो मिले। मंचात केस में गिरफ़्तार अनमोल उर्फ पिंकी ख़िलाफ़ फ़र्ज़ जुर्म लागू करण जी तारीख़ मुक़ररु। जुडिशल मजिस्ट्रेट ॾखिण जी अदालत में अनमोल उर्फ पिंकी ख़िलाफ़ गज़री थाणे ते दाख़िल केस जी ॿुधणी थी। जेल ज़रियुनि मूजिबि 6 केसिस में चालान ऐं शाहिदनि जे बयाननि जी कापी जवाबदार औरत पिंकी खे फ़राहम कई वई। ॿुधणी 2 हफ़्तनि लाइ मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर जी मुक़ररनि ते स्टे आर्डर जारी करे छॾियो। सिंध हुकूमत सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स ऐं जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी खे नोटिसिस जारी। 6 अगस्त ते जवाब तलब। डॉक्टर फरियाल तरफ़ां जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर जी मुक़ररनि खे चैलेंज कयो हो। दरख़्वास्त गुज़ार मूजिबि सिलेक्शन बोर्ड जूं 2 जुलाई 2026 ते कयल सिफ़ारिशूं गैरक़ानूनी ऐं मेरिट जे ख़िलाफ़ आहिनि। कामयाबु उमेदवार डॉक्टर नाज़िया, डॉक्टर किरन नाज ऐं वेटिंग लिस्ट ते मौजूदु डॉक्टर रिमला वटि लाज़मी पोस्ट लेवल 3 क्लिनिक तजुर्बो न आहे। पर अदालत केस जी जल्द ॿुधणी जी इस्तदा मंज़ूरु कंदे ॿुधणी 6 अगस्त ताईं मुलतवी करे छॾी।
1: आज मैं आम इस्पगोल नहीं बल्कि ऑरेंज फ्लेवर वाला फाइब्रोकॉल लेकर आई हूँ।
2: इस्पगोल और गंदम की भूसी से बना, सोडियम और शुगर फ्री।
0: इनकार वारसन लाश वसूल करण लाइ खैरपुर जी अदालत में पटीशन दाखिल करे छॾी। अदालत SSP खैरपुर ऐं DSP पीर जो ॻोठु ऐं SHO खे तलब करे वरितो। हिकु ॾींहुं अॻु ॻोठु इसाक नारे जुमे संगावती मामले तां भाणेजनि ऐं मामनि में झेड़ो थी पियो हो। फायरिंग में वसमात जीजा उर्फ़ शहज़ादी राबिया फतेह मोहम्मद राजा सोराब नारे जो मारिजी विया हुआ। पुलिस जो चवणु आहे त जेसीं ताईं जवाबदार पेश न थींदा लाश वारसनि हवाले न कया वेंदा।

ऐं कराची हैदराबाद नवाबशाह ठटो सजावल ऐं बदिन खे शहरी बोर्ड जे ख़तर ॾिनो। सिंधु दरिया जे आख़िरी हिसे में हुजण सबबि सिंधु बोर्ड जा ख़तरनि सबबि सभ खां वधीक मुतासिर थींदड़ सूबो आहे। सिंधु में बोर्ड जा टे वॾा ज़रिया सिंधु दरिया, खीरथर जाबलू पटी जा बरसाती वाकरा ऐं मॉनसून बरसातूं आहिनि। इजलास में कश्मोर, घोटकी, सखर, शिकारपुर, लाड़काणो दादू, जामचूर ऐं कंबर छदादकोट समेत हसास ज़िलनि जो जाइज़ो वरितो वियो। वॾे वज़ीर समूरनि खातनि खे मॉनसून जी सीज़न दौरान अलर्ट रहण जी हिदायत करे छॾी। इजलास में वफ़ाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक चेयरमैन एनडीए में, सूबाई वज़ीर जामखान चोरो ऐं ॿियनि शिरकत कई।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सिंकी है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंकी आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वफाक की आईनी अदालत कराची के इनसला टावर के ढहण जो सबब बनल। सुप्रीम कोर्ट जहा 2018-2019 जहा हुक्मनामा वापस वी छा। वफाकी आईनी अदालत करार दिनों त गैर कानूनी अदावत खिलाफ कार्रवाई जो अख्तियार बुनियादी तौर अदलिया न पर सूबाई हुकूमत जो है। अदालतू पांच अग्या मौजूद तकरार तई महदूद रहन ए गैर जरूरी मामलों में मुदाखलत न कन। वफाकी आईनी अदालत चयो त सुप्रीम कोर्ट बुधणी हेठ कैस का अगते निकरी वसी हुक्मनामा जारी कया। कानूनी घुर्जू पूरी करण का सवाय मिसमारी जो कम ए हुक्म नथो दई सकजे। मुंसिपाणी कानूनी कार्रवाई माना डे प्रोसेस हर केस में लाजमी आईनी घुर्ज है। आईनी अदालत मूजिब सिंध सरकार ए लागापियल इदारा गैर कानूनी अदावतों की निगरानी तोड़े कार्रवाई जहा आईनी ए कानूनी तौर पाबंद है। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह वादू नोट में चयो त पार्क्स रांद जहा मैदान ग्रीन बेल्ट फुटपाथ साहिल बेनवामी जायन के कब्जन तोड़े बेन छेन का महफूज रखे वहीं।

बलोचिस्तान जे लाइ खे ज़ियारत में मांगी डैम पुलिस स्टेशन ते दहशतगर्द वाक़े खां पोइ पाक फ़ौज एफ सी ऐं बलोचिस्तान पुलिस जो ऑपरेशन शोभा जारी। सिक्योरिटी ज़रनि मूजिबि 24 कलाकनि में वधीक 13 ख़्वार जी दहशतगर्द मारजण बाद मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंगु वधी 39 थी वियो। उन खां अॻु खुज़दार में पुलिस स्टेशन ते दहशतगर्द हमिलो नाकाम बणाए वियो। फ़ौज ऐं एफ सी जे कार्रवाइनि में 8 दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन शोभान दौरान पहाड़ी इलाइक़नि में फितनाल ख़ारिज खे वधीक सोड़ो कयो वियो। 5 जुलाई खां जारी ऑपरेशन शोभान ऐं ॿियनि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमू तौर 75 दहशतगर्द मारिजी चुका। ज़ियारत वाक़े में शहीद पुलिस अहलकारनि जे वारसनि जो कोयटा में कोयला फाटक वटि धरणो जारी। वाक़े जी जांच लाइ अदालती कमीशन जोड़ण जो मुतालबो। ॿिए पासे बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर सरफराज़ भुगटी जी ख़ातिरी बाद अना उड़क वाक़े ख़िलाफ़ धरणो ख़तमु। एयरपोर्ट रोड ते ट्रैफिक बहाल। अना उड़क हमले में मारिजी वियलनि जी जनाज़े नमाज़ अदा कई वई। 11 मुगी बाज़ियाब 5 जुलाई ते अना उड़क हमले में 4 ॼणा मारिजी विया ऐं 11 ॼणनि खे अॻवा कयो वियो हो।

असांखां का ग़लती थींदी त मञीदासीं बलूचिस्तान जे वॾे वज़ीर जूं हना उड़क वाक़िए ख़िलाफ़ु धरणे में शिरकत कंदड़नि सां ॻाल्हियूं। सरफराज़ बुगटी चयो त वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जी मौजूदगी में फ़ैसिला थिया, जेके वाइदा कया उन्हनि ते वॾे वज़ीर जी हिसत सां अमल जो पाबंद आहियां। हना उड़क वाक़िए जे शहीदनि जे पोइरनि खे माली इमदाद, नौकिरी ऐं ॿारनि खे तालीम ॾींदासीं। साज़िश तहत रियासत खे बदनाम कंदड़नि खे सख़्ती सां मुंहुं ॾिनो वेंदो।

ईरान अमेरिका शिकतान घटाने लाइ टाकड़ मुल्कन जूं सिफारिशूं सिफारती कोशिशूं जारी। ॿिनि ॾींहनि खां पोइ हमला रुकिजी विया। अमरीकी मीडिया मूजिबि कतर, पाकिस्तान, मिस्र ऐं सऊदी अरब जी अख़्तियारनि अरबा ॾींहुं अमरीकी ऐं ईरानी अख़्तियारनि सां राबता कया। टाकड़ी में शामिल ज़रियुनि मूजिबि शिकतान घटाइण जी कोशिशि जारी आहे, जीअं टेक्निकल टीमुनि में ईंदड़ ॻाल्हियुनि जी तारीख़ तय करे सघिजे। अमरीकी अख़्तियारनि ईरान सां टेक्निकल ॻाल्हियूं जारी रखण जी दावा कंदे चयो त ईरान सां मसइलनि जे लाइ पुरज़म आहियूं। ॿिए पासे ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची जो फील्ड मार्शल आसिम नीर सां फ़ोन ते राब्तो, ख़िते जी ताज़ी सूरताल ते ॻाल्हि ॿोल। अब्बास इराक़ची पारां सऊदी, उमानी ऐं तुर्क परॾेही वज़ीरनि सां बि टेलीफोनिक ॻाल्हि ॿोल। अमरीकी अमलनि जी मज़मत, अॻवाणनि पारां शिकतान घटाइण लाइ सफ़ारती ज़रिया इस्तेमालु करण ते ज़ोर। ईरान जे ॾाखणे सूबे बूशहर ऐं कुनारक बंदरगाह ते हमला। ईरानी सरकारी मीडिया मूजिबि बूशहर ऐं कुनारक में फ़ौजी हेडक्वार्टर्स ते हमला कया विया। ॿिए पासे अमरीका पारां हमलनि जी तरदीद। अमरीकी अख़्तियारनि अरब मीडिया खे ॿुधायो त अमरीका ख़मीस ते ईरान में को बि फ़ौजी हमिलो न कयो आहे, जेतोणीकि ईरान जा क़दम क़बूल न करण जोॻा आहिनि। उन बावजूदु अमरीका मुफ़ाहिमती यादाश्त ते अमल लाइ पुरज़म आहे।

ईरान जे शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई जो ताज़ियती इज्तिमा जो कुम में थींदो। सुप्रीम लीडर मुज़्तफ़ा खामनाई जी शिरकत जा इम्कान। ईरानी मीडिया मूजिब हरम हज़रत मासूमा में ताज़ियती इज्तिमा थींदो। शहीद रहबर आला अली खामनाई के मुशहद में मिटी मां हवाले कयो वेंदो। शहीद जी तदफीन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे रोज़े जे अंगण में कई वई। आयतुल्लाह अली खामनाई जी जनाज़ नमाज़ वॾे पुट आयतुल्लाह अली सैद मुस्तफ़ा खामनाई पढ़ाई। ईरानी मीडिया मूजिब तेहरान कुम नजब। तेहरान में गड़ियल हमला करे आयतुल्लाह अली खामनाई के शहीद कयो हो। ईरानी पासदारनि इनकलाब पारां शहीद सुप्रीम लीडर ते हमले जो प्लान वठण जो ऐलानु।

सिंध असेंबली जी कमेटी जो 8,000 का वधिक जूनियर साइंस टीचर्स भर्ती करण जो फैसलो। पेरे मरल में खाली पियल जायन ते भर्तियूं कई वेंदियूं। अर्ली चाइल्ड हुड टीचर्स जी टेस्ट में पंजवंजाह मार्कू हासिल कंदड़ उम्मीदवारनि खे 15 ॾींहनि अंदर ऑफर आर्डर्स ॾियण जो बि फ़ैसिलो। रहिजी वियल उम्मीदवार ॿीहर IBA जे ज़रिए टेस्ट ॾींदा। PST ऐं JST टेस्ट वेटिंग उम्मीदवारनि बाबति सिंध हाई कोर्ट जे फ़ैसिले जी रोशनी में AG ऑफिस ऐं कानून वारे खाते खां सिफ़ारिशूं तलब। कमेटी जे चेयरमैन स्पीकर अवेस कादर शाह चयो आहे त वेटिंग उम्मीदवारनि बाबति अदालती फ़ैसिले ते AG ऑफिस ऐं कानून वारे खाते खां सिफ़ारिशूं घुराईंदासीं त असां कहिड़ो फ़ैसिलो करे सघूं था। जेसीं ताईं मौक़िफ़ नथो अचे को फ़ैसिलो नथा करे सघूं। अपोज़िशन लीडर अली खुर्शीदी चयो त सुठी ख़बर आई आहे। हुकूमत ऐं अपोज़िशन फ़ैसिलो कयो आहे त सिंध जे नौजवाननि जो भलो थियणु घुरिजे। एजुकेशन डिपार्टमेंट खे तालीम जो ज़रियो बणाइणु घुरिजे, रोज़गार जो न। असांखे SET ऐं साइंस टीचर्स जी ज़रूरत हुई। कुल 1200 सीट्स आहिनि। 55 मार्कूं हासिल कंदड़ समूरनि उम्मीदवारनि खे भर्ती कयो वेंदो। रहिजी वियल उम्मीदवार ॿीहर टेस्ट ॾियनि। तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह जूं मीडिया सां ॻाल्हियूं। सरदार शाह चयो त 97,000 उस्तादनि जी भर्तियुनि जो अमल 4-5 सालनि ते हलियो। 1,00,000 खां वधीक शागिर्द यूनिवर्सिटीज़ मां डिग्रियूं हासिलु करे निकिता आहिनि। हाणे मुतालबो करे रहिया आहिनि त सभु नौकिरियूं पुराणनि उमेदवारनि खे ॾिनियूं वेंदियूं त असां काॾे वेंदासीं। फ़ैसिलो कयो वियो आहे त नवनि उमेदवारनि खे मौक़ो मिले ऐं असांखे जंहिं उस्ताद जी ज़रूरत आहे उहो मिले। मंशाद केस में गिरफ़्तार अनमोल उर्फ पिंकी ख़िलाफ़ परदेस जुर्म लागू करण जी तारीख़ मुक़ररु। जुडिशल मजिस्ट्रेट ॾखिण जी अदालत में अनमोल उर्फ पिंकी ख़िलाफ़ गिज़री थाणे ते दाख़िल केस जी ॿुधणी थी। जेल ज़रियनि मूजिबि छह केसिस में चालान ऐं शाहिदनि जे बयाननि जी कापी जवाबदार औरत पिंकी खे फराहम कई वई आहे। अदालत केस जी ॿुधणी 2 हफ़्तनि लाइ मुलतवी करे छॾी। सिंध हाई कोर्ट जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर जी मुक़ररनि ते स्टे आर्डर जारी करे छॾियो। सिंध हुकूमत सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स ऐं जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी खे नोटिसिस जारी। 6 अगस्त ते जवाब तलब। डॉक्टर फरियाल तर्फ़ां जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर जी मुक़ररनि खे चैलेंज कयो वियो हो। दरको गुज़ार मूजिबि सिलेक्शन बोर्ड जूं 2 जुलाई 2026 ते कयल सिफ़ारिशूं गैरक़ानूनी ऐं मेरिट जे ख़िलाफ़ आहिनि। कामयाब उम्मीदवार डॉक्टर नाज़िया, डॉक्टर किरण नाज़ ऐं बैटिंग लिस्ट ते मौजूदु डॉक्टर रिमला वटि लाज़मी पोस्ट लेवल 3 क्लिनिक तजुर्बो नाहे। अदालत खे सॼी जल्द ॿुधणी जी सदा मंज़ूर कंदे ॿुधणी 6 अगस्त ताईं मुलतवी करे छॾी। कोट मीर मोहम्मद वारे इलाइक़े में मारिजी वियल 2 औरतुनि समेत 5 ॼणनि जा लाश 24 कलाकनि खां इस्पताल में पियल। पुलिस जो जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी ताईं लाश वारसनि हवाले करण खां इनकार। वारसनि लाश वसूल करण लाइ खेरापुर जी अदालत में पटीशन दाख़िल करे छॾी। अदालत SSP खेरापुर ऐं DSP पीर जो ॻोठु ऐं SHO खे तलब करे वरितो। 1 ॾींहुं अॻु ॻोठु इसाक नारे जो में संगावती तकरार तां मामनि ऐं भाणेजनि विच में झेड़ो थी पियो हो। फायरिंग में मसमात जीजा और फौशेज़ादी राबिया फतेह मोहम्मद राजा ऐं सोराब नारे जो मारिजी विया हुआ। पुलिस जो चवणु आहे त जेसीं ताईं जवाबदार पेश न थींदा लाश वारसनि हवाले न कया वेंदा। ऐं कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, ठट्टो, सजावल ऐं बदनशहरी ॿोड़ जे ख़तरनि वारा ज़िला करार। NDA में जो चवणु आहे त 15 जुलाई खां 30 अगस्त ताईं मॉनसून सीज़न जा इम्कान आहिनि। सिंध सभ खां वधीक मुतासिर थींदड़ सूबो आहे। सिंध में ॿोड़ जा 3 वॾा ज़रिया सिंधु दरिया, खीरथर जाबलू पटी जा बरसाती वकरा ऐं मॉनसून बरसातूं आहिनि। वॾे वज़ीर जी समूरनि खातनि खे मॉनसून जी सीज़न दौरान अलर्ट रहण जी हिदायत। इजलास में वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक चेयरमैन NDA में सूबाई वज़ीर जाम ख़ान चोरो ऐं ॿियनि शिरकत कई।

0: बुलेटिन शुरुआत में उहा खे ख़बर ॾींदासीं त गढ़ी खेरो थाणे जे हद सैफला शाह खां अणॼातल नौजवान जो लाश थियो आहे इस्पताल मुंतकिल कयो वियो। इतलाउ खां पोइ गढ़ी खेरो पुलिस लाश खणाए इस्पताल मुंतकिल कयो। गढ़ी खेरो थाणे जी
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो GAFM 90.8।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वफाकी आईनी अदालत कराची के नसला टावर के ड्राहण जो सबब बनल सुप्रीम कोर्ट जहा 2018-2019 जहा हुक्मनामा वापस वी छा। वफाकी आईनी अदालत करार दिनो है तो गैर कानूनी अदावत खिलाफ कार्रवाई जो अख्तियार बुनियादी तौर अध्ययन न पर सूबे हुक्म जो है। अदालतू पैं अगया मौजूद तकरार तई महदूद रहन गैर जरूरी मामलों में मुदाखलत न कन। वफाकी आईनी अदालत चो तो सुप्रीम कोर्ट बुधणी हेठ केस का अगते निकरी वसी हुक्मनामा जारी किया। कानूनी घुर्जू पूरी करण का सवाए मिसमारी जो हुक्म नथो जी सके। मुंसफाणी कानूनी कार्रवाई माना ड्यू प्रोसेस हर केस में लाजमी आइनी घुर्ज है। आइनी अदालत मौजूद सिंध सरकार ए लागापल इदारा गैर कानूनी अदावतों की निगरानी तोड़े कार्रवाई जहा आइनी ए कानूनी तौर पर पाबंद है। जस्टिस सैद अरशद हुसैन शाह वो नोट में चो तो पार्क्स रांदन जहाँ मैदान ग्रीन बेल्ट्स फुटपाथ साहिल बेन अवामी जैन के कब्जन तोड़े का माफ ए महफूज रख वे। बलूचिस्तान के इलाके ज्यारत में मांगी डैम पुलिस स्टेशन से दहशत वाक़े का पाक फौज एफसी बलूचिस्तान पुलिस जो ऑपरेशन शौबान जारी। सिक्योरिटी सर्वे मूजिब 24 कलाकन में 13 खुआरजी दहशत मारजी वह मारजी जो अंग 39 थी वो उन अगु खोसदार में पुलिस स्टेशन से दहशत हमलों नाकाम बनाए वो। फौज एफसी के कार्रवाई में 8 दहशत मारजी वह ऑपरेशन शहबान दौरान पहाड़ी इलाकन में फितनतुल खवारज के सोड़ो किया वो। 5 जुलाई का जारी ऑपरेशन शहबान बेन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमू तौर से 75 दहशत मारज चुका। ज्यारत वाक़े में शहीद पुलिस अहलकारन के वारसन जो कोटिया में कोयला फाटक वे देणो जारी। वाक़े की जांच लाए अदालती कमीशन जोड़ जो मुतालबो। बे पासे बलूचिस्तान के वे वजीर सरफराज बुख्ती की खातिरी बाद हुना उड़क वाक़े खिलाफ देणो खत्म एयरपोर्ट रोड से ट्रैफिक बहाल। हुना उड़क हमले में मारजी वेलन की चनास नवाज अदा की वही। यार मुगी बाजियाब 5 जुलाई से हुना उड़क हमले में 4 जणा मारजी वह 11 जणन के अगवा किया वो।

असां खां का ग़लती थींदी त मञींदासीं। बलूचिस्तान जे वॾे वज़ीर जूं हुन ओड़क वाके ख़िलाफ़ धरणे में शिरकत कंदड़नि सां ॻाल्हियूं। सरफराज बुगटी चयो त वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जी मौजूदगी में फ़ैसिला थिया, जेके वाइदा कया उन्हनि ते वॾे वज़ीर जी हैसियत सां अमल जो पाबंद आहियां। हुन ओड़क वाके जे शहीदनि जे पोइरनि खे माली मदद, नौकिरी ऐं ॿारनि खे तालीम ॾींदासीं। साज़िश तहत रियासत खे बदनाम कंदड़नि खे सख़्ती सां मुंहुं ॾिनो वेंदो। ईरान अमेरिका शिकताण घटाइण लाइ 73 मुल्कनि जूं सफ़ारती कोशिशूं जारी। ॿिनि ॾींहनि खां पोइ हमला रुकिजी विया। अमरीकी मीडिया मूजिबि कतर, पाकिस्तान, मिस्र ऐं सऊदी अरब जे अख़्तियारनि अरबा ॾींहं अमरीकी ऐं ईरानी अख़्तियारनि सां राबता कया। 73 में शामिलु ज़रियनि मूजिबि शिकताण घटाइण जी कोशिशि जारी आहे त जीअं टेक्निकल टीमुनि में ईंदड़ ॻाल्हियुनि जी तारीख़ तय करे सघिजे। अमरीकी अख़्तियारनि पारां ईरान सां टेक्निकल ॻाल्हियूं जारी रखण जी दावा कंदे चयो त ईरान सां मसइलनि जे हल लाइ पुरअज़म आहियूं। ॿिए पासे ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास राख़्ची जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां फ़ोन ते राब्तो, ख़िते जी ताज़ी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल कई। अब्बास राख़्ची पारां सऊदी, उमानी ऐं तुर्क परॾेही वज़ीरनि सां बि टेलीफोनिक ॻाल्हि ॿोल कई। अमरीकी हमलनि जी मज़मत अॻवाननि पारां शिकताण घटाइण लाइ सफ़ारती ज़रिया इस्तेमालु करण ते ग़ौरु।

ईरान के ॾاکھنے सूबे बू शहर ए कुनारक बंदरगाह ते हमला। ईरानी सरकारी मीडिया मूजिब बू शहर ए कुनारक में फौजी हेडक्वार्टर्स ते हमला किया व्या। बे पासे अमरीका पारा हमलन की तरदीद। अमरीकी अख्तियारन अरब मीडिया के बुधायो तो अमरीका खमीस ते ईरान में को भी फौजी हमलों न कयो आहे, जेतोणीक ईरान जा कदम कबूल जोगन आहिन। उन बावजूद अमरीका मुफाहमती याददाश्त ते अमल लाइ पुरअज़म आहे। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्ला अली खामनई जो ताज़ियती इज्तिमा अज कुम में थींदो। सुप्रीम लीडर मुश्तफा खामनई की शिरकत जा इम्कान। ईरानी मीडिया मूजिब हर हज़रत मासूम ताज़ियती इज्तिमा थींदो। शहीद रहबर आला के मशहद में मिट्टी मां हवाले किया वेंदो। शहीद की तदफीन हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के अंगण में कई वही। आयतुल्ला अली खामनई की जनाज़े नमाज वे पुट आयतुल्ला सैद मुस्तफ़ा खामनई पढ़ाई। ईरानी मीडिया मूजिब तहरान कुम नजफ करबला ए मशहद में छह दिन ताई जारी जुलूसन दौरान 4.25 करोड़ मानून शिरकत कई। अमरीका ए इसराइल 131 डी अगो तहरान में गड़ियल हमला करे आयतुल्ला अली खामनई के शहीद किया हो। ईरानी पासदारन ए इनकलाब पारा शहीद सुप्रीम लीडर ते हमले जो प्लान वठण जो ऐलान। सिंध असेंबली की कमेटी जो 8000 का वधिक जूनियर साइंस टीचर्स भर्ती करने जो फैसलो। पहले मरहले में खाली पियल जायन ते भर्ती कई वेंदी। अर्ली चाइल्डहुड टीचर की टेस्ट में 55 मार्कू हासिल कड़ उम्मीदवार के 15 अंदर ऑफर आर्डर दियण जो भी फैसलो। रहजी वियल उम्मीदवार बीहर IBA जरिए टेस्ट दींदा। PTS ए JST टेस्ट वेटिंग उम्मीदवार बाबत सिंध हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में AG ऑफिस ए कानून वाले खाते का सिफारिश तलब। कमेटी के चेयरमैन स्पीकर अवेस कादिर शाह चो तो वेटिंग उम्मीदवार बाबत अदालती फैसले ते AG ऑफिस ए कानून वाले खाते का सिफारिशों घुराइंदी तो असा कड़ो फैसलो कर सकूँ था। जेस तई मौकुफ न तो अचे को फैसलो ना कर सकूँ। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी चो तो सुठी खबर आई है। हुकूमत ए अपोजिशन फैसलो किया है तो सिंध के नौजवान जो भलो थियण घुर्जे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के तालीम जो जरियो बनाने घुर्जे। रोजगार जो न असा के ACT ए साइंस टीचर की जरूरत हुई। कुल 1200 सीट्स आन 55 मार्कू हासिल कड़ समूर उम्मीदवार के भर्ती किया वो। रहजी वियल उम्मीदवार बीहर टेस्ट दियन। तालीम वे वजीर सरदार शाह जो मीडिया से गाल। सरदार शाह चो तो 97,000 उस्ताद की भर्ती जो अमल 4-5 साल ती हलो। 1,00,000 का वधिक शागिर्द यूनिवर्सिटीज में डिग्री हासिल कर निकता है। हाँ मुतालबो कर रहा है तो सब नौकर पुराने उम्मीदवार के डनी वेंद तो अस काडे वासी। फैसलो किया है तो नवन उम्मीदवार के मौको मिले असा के जै उस्ताद की जरूरत है वो मिले। मंशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिनकी खिलाफ फर्द जुर्म लागू करने की तारीख मुकरर। जुडिशल मजिस्ट्रेट दखण की अदालत में अनमोल उर्फ पिनकी खिलाफ गिजरी थाने ते दाखिल केस की बुधनी थी। जेल जरिए मूजिब 6 केसेस में चालान ए शायदन के बयान की कापी जवाबदार औरत पिनकी के फराम कई वही है। अदालत केस की बुधनी 2 हफ्तों लाइ मुलतवी कर छी। सिंध हाईकोर्ट जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के मुकरन ते स्टे आर्डर जारी कर छोड़ो। सिंध हुकूमत सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स ए जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के नोटिस जारी कर 6 अगस्त से जवाब तलब। डॉक्टर फरियाल तरफा जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के मुकरन के चैलेंज किया हो। दरख्वास्त गुजार मूजिब सिलेक्शन बोर्ड जो 2 जुलाई का 2026 से कल सिफारिशों गैरकानूनी ए मेरिट के खिलाफ आन। कामयाब उम्मीदवार डॉक्टर नाजिया डॉक्टर किरण दास ए वेटिंग लिस्ट से मौजूद डॉक्टर रमलावट लाजमी पोस्ट लेवल 3 क्लिनिक तजुर्बो न है। अदालत केस की जल्द बुधनी की सदा मंजूर कदे बुधनी 4 अगस्त तक मुलतवी कर छी।
कोट मीर मोहम्मद वारे इलाके में मार्जियल बिन औरतुन समेत पंजन जणन जा लाश 24 कलाकन का अस्पताल में पयल। पुलिस जो जवाबदार की गिरफ्तारी ताई लाश वारसन हवाले करण का इनकार। वारसन लाश वसूल करण लाइ खैरपुर की अदालत में पटिशन दाखिल कराए छी। अदालत SSP खैरपुर और DSP पीरजो गोठ और SHO के तलब कर वरतो। एक ढी अग गोठ इसाक नारे जो में संगावती तकरार था मामन ए भाणेजन विच में झेड़ो थी पो। फायरिंग में मुस्मात जीजा उर्फ शहजादी राबिया फतेह मोहम्मद राजा ए सोहराब नारे जो मारजी वया हुआ। पुलिस जो चवण है तो जेस तई जवाबदार पेश न थींदा लाश वारसन हवाले न कया वेंदा।

ऐं कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, ठठो, सिजाल ऐं बदीन शहरी ॿोझ जे ख़तरनि वारा ज़िला क़रार। एन डी एम ए जो चवणु आहे त 15 जुलाई खां 30 अगस्त ताईं मूनसून सीज़न जा इम्कान आहिनि। सिंध सभ खां वधीक मुतासिर थींदड़ सूबो आहे। सिंध में ॿोझ जा 3 वॾा ज़रिया सिंधु दरिया, खीथर, जाबलू पटी जा बरसाती वहकिरा ऐं मूनसून बरसातूं आहिनि। वॾे वज़ीर जे समूरनि खातनि खे मूनसून जे सीज़न दौरान अलर्ट रहण जी हिदायत। इजलास में वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक़ मलक, चेयरमैन एन डी एम ए, सूबाई वज़ीर जामखान छोरो ऐं ॿियनि शिरकत कई।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में मांगी डैम पुलिस स्टेशन से दहशतगर्द वाके का पाक फौज एफसी बलूचिस्तान पुलिस जो ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी दरियन मूजिब 24 कलाकन में 13 खवार की दहशतगर्द मारजण बाद मारजी वेलन जो अंग 39 थी वो। उन अगु खुजार में पुलिस स्टेशन से दहशतगर्द हमलो नाकाम बनाए वो। फौज एफसी के कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारजी व्या। ऑपरेशन शाबान दौरान पहाड़ी इलाकन में फितनतुल खवारिज के सोड़ो किया वो। 5 जुलाई का जारी ऑपरेशन शाबान में बेन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर 75 दहशतगर्द मारजी चुका। ज़ियारत वाक़े में शहीद पुलिस अहलकारनि जे वारसनि जो कोटिया में कोयला फाटक वटि ॾियणो जारी। वाक़े जी जांच लाइ अदालती कमीशन जोड़ण जो मुतालबो। ॿिए पासे बलूचिस्तान जे वॾे वज़ीर सरफराज़ भुगटी जी ख़ातिरी बाद हुना ओड़क वाक़े ख़िलाफ़ ॾियणो ख़तमु। एयरपोर्ट रोड ते ट्रैफिक बहाल। हुना ओड़क हमले में मारिजी वियल जी जनाज़ नमाज़ अदा कई वई। यार मुगी बाज़ियाब 5 जुलाई ते हुना ओड़क हमले में 4 ॼणा मारिजी विया ऐं 11 ॼणनि खे अॻवा कयो वियो हो।

असांखां का ग़लती थींदी त मञींदासीं। बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर जो हुना उड़क वाके ख़िलाफ़ु ॾियण में शिरकत कंदड़नि सां ॻाल्हियूं। सरफराज बुगटी चयो त वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जी मौजूदगी में फ़ैसिला थिया। जेके वाइदा कया उन्हनि ते वॾे वज़ीर जी हैसियत सां अमल जो पाबंद आहियां। हुना उड़क वाके जे शहीदनि जे पोइरनि खे माली इमदाद, नौकिरी ऐं ॿारनि खे तालीम ॾींदासीं। साजिद तहत रियासत खे बदनाम कंदड़नि खे सख़्ती सां मुंहुं ॾिनो वेंदो। ईरान अमेरिका शिकताण घटाइण लाइ टियाकड़ मुल्कनि जूं सफ़ारती कोशिशूं जारी। ॿिनि ॾींहनि खां पोइ हमला रुकिजी विया। अमेरिकी मीडिया मूजिबि कतर, पाकिस्तान, मिस्र ऐं सऊदी अरब जे अख़्तियारनि अरबा ॾींहं अमेरिकी ऐं ईरानी अख़्तियारनि सां राबता कया। टियाकड़ में शामिल ज़रियुनि मूजिबि शिकताण घटाइण जी कोशिश जारी आहे त जीअं टेक्निकल टीमुनि में ईंदड़ ॻाल्हियुनि जी तारीख़ तय करे सघिजे। अमरीकी अख़्तियारनि पारां ईरान सां टेक्निकल ॻाल्हियूं जारी रखण जी दावा कंदे चयो त ईरान सां मसइलनि जे हल लाइ पुरज़म आहियूं। ॿिए पासे ईरानी परॾेही वफ़द वज़ीर अब्बास सिराकची जो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर सां फ़ोन ते राबितो, खिते जी ताज़ी सूरताल ते ॻाल्हि ॿोल कई। अब्बास सिराकची पारां सऊदी, उमानी ऐं तुर्क परॾेही वज़ीरनि सां बि टेलीफोनिक ॻाल्हि ॿोल। अमरीकी अमलनि जी मज़बत अॻवाननि पारां शिकताण घटाइण लाइ सफ़ारती ज़रिया इस्तेमालु करण ते ज़ोर। ईरान जे ॾाखणे सूबे बूशहर ऐं कुनारक बंदरगाह ते हमला। ईरानी सरकारी मीडिया मूजिबि बूशहर ऐं कुनारक में फ़ौजी हेडक्वार्टर्स ते हमला कया विया। ॿिए पासे अमरीका पारां हमलनि जी तरदीद। अमरीकी अख़्तियारनि अरब मीडिया खे ॿुधायो त अमरीका ख़मीस ते ईरान में को बि फ़ौजी हमिलो न कयो आहे। जेतोणीकि ईरान जा क़दम क़बूल जोगा न आहिनि, उन बावजूदि अमरीका मुफ़ाहिमती यादाश्त ते अमल लाइ पुरज़म आहे। ईरान जे शहीद रहबर आला आयतुल्ला अली खामनई जो ताज़ियती इजतमा अॼु कुम थींदो। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई जी शिरकत जे अमकान ईरानी मीडिया मूजिबि हरम हज़रत मासूम में ताज़ियती इजतमा थींदो। शहीद रहबर आला खे मशहद में मिटी मां हवाले कयो वियो हो। शहीद जी तदफ़ीन हज़रत इमाम अली रज़ा जे रोज़े जे अंगण में कई वई। आयतुल्ला अली खामनई जी जनाज़े नमाज़ वॾे पुट आयतुल्ला सैद मुस्तफ़ा खामनई पढ़ाई। ईरानी मीडिया मूजिबि तहरान, कुम, नजफ, करबला ऐं मशहद में छह ॾींहनि ताईं जारी जुलूसनि दौरान 4.25 करोड़ माण्हुनि शिरकत कई। अमरीका ऐं इसराइल 131 ॾींहं अॻु तहरान में गॾियल हमला करे आयतुल्ला अली खामनई खे शहीद कयो हो। ईरानी पासदारनि इनकलाब पारां शहीद सुप्रीम लीडर ते हमले जो प्लान वठण जो ऐलान। वफ़ाक़ी आइनी अदालत कराची जे नसला टावर खे ड्राहिण जो सबबु बणियल सुप्रीम कोर्ट जा 2018 ऐं 2019 जा हुकुमनामा वापसि वठी छॾिया। वफ़ाक़ी आइनी अदालत करार ॾिनो त ग़ैर क़ानूनी अदावत ख़िलाफ़ु कार्रवाई जो अख़्तियार बुनियादी तौरु अदलिया न पर सूबाई हुकूमत जो आहे। अदालतूं पंहिंजे अॻियां मौजूदा तकरार ताईं महदूद रहनि ऐं ग़ैर ज़रूरी मामलनि में मुदाख़लत न कनि। वफ़ाक़ी आइनी अदालत चयो त सुप्रीम कोर्ट ॿुधणी हेठि केस खां अॻिते निकिरी वसी हुकुमनामा जारी कया। कानून घुर्जियूं पूरियूं करण खां सवाइ मिसमारी जो हुकुम नथो ॾेई सघे। मुनसिफाणी कानूनी कार्रवाई माना ड्यू प्रोसेस हर केस में लाज़मी आइनी घुर्ज आहे। आइनी अदालत मूजिबि सिंध सरकार ऐं लाॻापियल इदारा ग़ैर क़ानूनी अदावतुनि जी निगरानी तोड़े कार्रवाई जा आइनी ऐं क़ानूनी तौर ते पाबंद आहिनि। जस्टिस सैद अरशद हुसैन शाह वाधू नोट में चयो त पार्कस, रांदियुनि जा मैदान, ग्रीन बेड्स, फुटपाथ, साहिल ऐं ॿियनि अवामी जाइनि खे कब्ज़नि तोड़े खां महफ़ूज़ रखियो वञे।

0: सिंध असेंबली जे कमेटी जो 8,000 खां वधीक जूनियर साइंस टीचर्स भर्ती करण जो फ़ैसिलो। पहिरें मरहले में खाली पियल जाइन ते भर्तियूं कई वेंदियूं। अर्ली चाइल्डहुड टीचर जी टेस्ट में 55 मार्कूं हासिलु कंदड़ उमेदवारनि खे 15 ॾींहनि अंदरि ऑफर आर्डर ॾियण जो बि फ़ैसिलो। रहिजी वियल उमेदवार ॿीहर IBA ज़रिए टेस्ट ॾींदा। PST ऐं JST वेटिंग उमेदवारनि बाबति सिंध हाईकोर्ट जे फ़ैसिले जी रोशनी में AG ऑफिस ऐं कानून वारे खाते खां सिफ़ारिशूं तलब। कमेटी जे चेयरमैन अवेस कादिर शाह चयो त वेटिंग उमेदवारनि बाबति अदालती फ़ैसिले ते AG ऑफिस ऐं कानून वारे खाते खां सिफ़ारिशूं घुराईंदासीं त असां कहिड़ो फ़ैसिलो करे सघूं था। जेसिताईं मौक़ो नथो अचे को फ़ैसिलो नथा करे सघूं। अपोज़िशन लीडर अली खुर्शीदी चयो त सुठी ख़बर आई आहे, हुकूमत ऐं अपोज़िशन फ़ैसिलो कयो आहे त सिंध जे नौजवाननि जो भलो थियणु घुरिजे।
1: आज तुम जीतेगी या मेरी भूख?
0: गुर्जे रोजगार जो न असांखे ECT ऐं साइंस टीचर जी ज़रूरत हुई। कुल 1200 सीट्स आहिनि। 55 मार्कूं हासिलु कंदड़ समूरनि उमेदवारनि खे भर्ती कयो वेंदो। रहिजी वियल उमेदवार ॿीहर टेस्ट ॾियनि। तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह अॼु मीडिया सां ॻाल्हियूं। सरदार शाह चयो त 97,000 उस्तादनि जी भर्तियुनि जो अमल 4-5 सालनि ताईं हलियो। 1,00,000 खां वधीक शागिर्द यूनिवर्सिटीज़ मां डिग्रियूं हासिलु करे निकिता आहिनि। हाणे मुतालबो करे रहिया आहिनि त सभु नौकिरियूं पुराणनि उमेदवारनि खे ॾिनियूं वेंदियूं त असां काॾे वेंदासीं। फ़ैसिलो कयो आहे त नवनि उमेदवारनि खे मौक़ो मिले ऐं असांखे जंहिं उस्तादनि जी ज़रूरत आहे उहे मिलनि। घोटकी जे इलाइक़े कादरपुर में निगरी ते टहकंदड़ तेल हाइण वारे वाक़े जो केस दाख़िल। ए सेक्शन थाणे जी पुलिस केस में नामज़द ॿिनि मां हिकु जवाबदार ग़ुलाम मुर्तज़ा भुट्टो खे गिरफ़्तार करे वरितो। घोटकी सिविल इस्पताल जे डॉक्टर सड़ी वियल निगरी खे गंभीर इस्पताल रेफर करे छॾियो। मुतासिर निगरी जो पोरियत वाले जो चवणु आहे त हू ग़रीब हुजण करे धीउ खे गंभीर मुंतकिल नथो कराए सघे। सरकार ऐं सरहंदी वारा मदद कनि। ॿिए पासे IG सिंध जावेद आलम ओढो वाक़े जो नोटिस वठंदे SSP घोटकी खां रिपोर्ट घुराए वरिती। कराची यूनिवर्सिटी में सिंधी शागिर्दनि ते हमले ख़िलाफ़ सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। दादू ठरी मीरवा ऐं ॿियनि शहरनि में एहतजाज। शागिर्दनि ते हमले में मुलस जवाबदारनि ख़िलाफ़ सख़्तु एक्शन जो मुतालबो। ॿिए पासे यूनिवर्सिटीज़ ऐंड बोर्ड्स खाते जे वज़ीर पारां शागिर्द धुरनि में जहिड़े जी जाच लाइ आला सतही कमेटी क़ाइमु। 15 में रिपोर्ट पेश करण जी हिदायत। हुन खां अॻु मोबैना टाउन थाणे ते ज़ख़्मी शागिर्द जी फरियाद ते वाक़े जो केस दाख़िल कयो वियो। पुलिस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार न कयो। यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया बि हमले में मुलस जवाबदारनि ख़िलाफ़ एक्शन न खयऊं। बख्शापुर भरिसां भंगवार बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में पाणी तकरार तां जहिड़ो गोलियूं लॻण जे नतीजे में नौजवान लियाकत अली भंगवार मारिजी वियो। पुलिस इस्पताल में पोस्टमार्टम लाइ बाद लाश वारसनि हवाले कयो। पुलिस मूजिबि भंगवार बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में सारियाले फ़सुल लाइ पाणी जे मामले तां झेड़ो थियो हो।

0: कमी कमजोर बेजान और टूटने लगे हैं? अब हल है मोहेयर शैम्पू बाय सिग्नेचर ब्यूटे। 90% कुदरती जड़ी बूटियों और अज्जा से।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: GAFM 88
2: नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फौजदार में पुलिस स्टेशन ते दहशतगर्द हमलो नाकाम बनाए वो फौज FC के कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मार जी विया। ऑपरेशन छह बांध दौरान पहाड़ी इलाकन में फितनतुल खवारिज के वधिक सोड़ो के वियो। 5 जुलाई का जारी ऑपरेशन छह बांध में बेन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर 75 दहशतगर्द मारजी चुका।

असां खां का ग़लती थींदी त मञींदासीं बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर जो हुन उड़क वाके ख़िलाफ़ु ॾियण में शिरकत कंदड़नि सां ॻाल्हियूं। सरफराज बुगटी चयो त वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जी मौजूदगी में फ़ैसिला थिया। जेके वाइदा कया उन्हनि ते वॾे वज़ीर जी हैसियत सां अमल जो पाबंद आहियां। हुन उड़क वाके जे शहीदनि जे पोइरनि खे माली इमदाद, नौकरी ऐं ॿारनि खे तालीम ॾींदासीं। साजिद तहत रियासत खे बदनाम कंदड़नि खे सख़्ती सां मुंहुं ॾिनो वेंदो।

ईरान अमेरिका शिकताण घटाइण लाइ टेकड़ मुल्कनि जूं सफ़ारती कोशिशूं जारी. ॿिनि ॾींहनि खां पोइ हमला रुकिजी विया. अमेरिकी मीडिया मूजिबि قطر پاکستان مصر ऐं सऊदी अरब जे अख़्तियारनि अरबा ॾींहं अमेरिकी ऐं ईरानी अख़्तियारनि सां राबता कया. ट्रैकरी में शामिल ज़रियनि मूजिबि शिकताण घटाइण जी कोशिशि जारी आहे त जीअं टेक्निकल टीमुनि में ईंदड़ ॻाल्हियुनि जी तारीख़ तय करे सघिजे. अमरीकी अख़्तियारनि पारां ईरान सां टेक्निकल ॻाल्हियूं जारी रखण जी दावा कंदे चयो त ईरान सां मसइलनि जे हल लाइ पुरअज़म आहियूं. ॿिए पासे ईरानी परॾेही वफ़द वज़ीर अब्बास इराकची जो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर सां फ़ोन ते राबितो. खिते जी ताज़ी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल कई. अब्बास इराकची पारां सऊदी, उमानी ऐं तुर्क परॾेही वज़ीरनि सां बि टेलीफोनिक ॻाल्हि ॿोल. अमरीकी अमलनि जी मज़बत अॻवाननि पारां शिकताण घटाइण लाइ सफ़ारती ज़रिया इस्तेमालु करण ते ज़ोरु.

İrancı शहीद रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई जो ताज़ी ते इज्तिमा अॼु गुम थींदो। सुप्रीम लीडर मुज़्तबा खामनाई जी शिरकत खां ईरानी मीडिया मूजिब हरम हज़रत मासूम में ताज़ी ते इज्तिमा थींदो। शहीद रहबर आला खे मशहद में मिटी मां हवाले कयो वियो हो। शहीद जी तदफ़ीन हज़रत इमाम अली रज़ा जे रोज़े जे अंगण में कई वई। आयतुल्ला अली खामनाई जी जनाज़े नमाज़ वॾे पुट आयतुल्ला सैद मुस्तफ़ा खामनाई पढ़ाई। ईरानी मीडिया मूजिब तहरान, कुम, नजफ, करबला ऐं मशहद में छह ॾींहनि ताईं जारी जुलूसनि दौरान 4.25 करोड़ माण्हुनि शिरकत कई। अमरीका ऐं इसराइल 131 ॾींहं अॻु तहरान में गॾियल हमला करे आयतुल्ला अली खामनाई खे शहीद कयो हो। ईरानी पासदारनि इंकलाब पारां शहीद सुप्रीम लीडर ते हमले जो प्लान वठण जो ऐलान।

Vou falar que... ऐं अदालत कराची जे नसला टावर खे ड्राहण जो सबबु बणियल सुप्रीम कोर्ट जा 2018 ऐं 2019 जा हुकुमनामा वापसि वठी छॾिया। वफ़ाक़ी आइनी अदालत करार ॾिनो त ग़ैर क़ानूनी अदावत ख़िलाफ़ु कार्रवाई जो अख़्तियार बुनियादी तौरु अदलिया न पर सूबाई हुकूमत जो आहे। अदालतूं पंहिंजे अॻियां मौजूदा तकरार ताईं महदूद रहनि ऐं गैर ज़रूरी मामलनि में मुदाख़लत न कनि। वफ़ाक़ी आइनी अदालत चयो त सुप्रीम कोर्ट ॿुधणी हेठि केस खां अॻिते निकिरी वसी हुकुमनामा जारी कया। कानून घुर्जियूं पूरियूं करण खां सवाइ मिसमारी जो हुकुम नथो ॾेई सघे। मुनसिफाणी कानूनी कार्रवाई माना ड्यू प्रोसेस हर केस में लाज़मी आइनी घुर्ज आहे। आइनी अदालत मूजिबि सिंध सरकार ऐं लाॻापियल इदारा ग़ैर क़ानूनी अदावतुनि जी निगरानी तौरे कार्रवाई जा आइनी ऐं क़ानूनी तौर ते पाबंद आहिनि। जस्टिस सैद अरशद हुसैन शाह वाधू नोट में चयो त पार्कस, रांदियुनि जा मैदान, ग्रीन बेड्स, फुटपाथ, साहिल ऐं ॿियनि अवामी जाइनि खे कब्ज़नि तोड़े खां महफ़ूज़ रखियो वञे।

0: सिंध असेंबली जे कमेटी जो 8,000 खां वधीक जूनियर साइंस टीचर्स भर्ती करण जो फ़ैसिलो। पहिरें मरहले में खाली पियल जाइन ते भर्तियूं कई वेंदियूं। अर्ली चाइल्डहुड टीचर जी टेस्ट में 55 मार्कूं हासिलु कंदड़ उमेदवारनि खे 15 ॾींहनि अंदरि ऑफर आर्डर ॾियण जो बि फ़ैसिलो। रहिजी वियल उमेदवार ॿीहर IBA ज़रिए टेस्ट ॾींदा। PST ऐं JST वेटिंग उमेदवारनि बाबति सिंध हाईकोर्ट जे फ़ैसिले जी रोशनी में AG ऑफिस ऐं कानून वारे खाते खां सिफ़ारिशूं तलब। कमेटी जे चेयरमैन अवेस क़ादिर शाह चयो त वेटिंग उमेदवारनि बाबति अदालती फ़ैसिले ते AG ऑफिस ऐं कानून वारे खाते खां सिफ़ारिशूं घुराईंदासीं त असां कहिड़ो फ़ैसिलो करे सघूं था। जेसिताईं मौक़ो नथो अचे को फ़ैसिलो नथा करे सघूं। अपोज़िशन लीडर अली खुर्शीदी चयो त सुठी ख़बर आई आहे, हुकूमत ऐं अपोज़िशन फ़ैसिलो कयो आहे त सिंध जे नौजवाननि जो भलो थियणु घुरिजे। एजुकेशन डिपार्टमेंट खे तालीम जो ज़रियो बणाइणु घुरिजे, रोज़गार जो न। असांखे ECT ऐं साइंस टीचर जी ज़रूरत हुई। कुल 1200 सीट्स आहिनि। 55 मार्कूं हासिलु कंदड़ समूरनि उमेदवारनि खे भर्ती कयो वेंदो। रहिजी वियल उमेदवार ॿीहर टेस्ट ॾियनि। तालीम वारे वज़ीर सरदार शाह अॼु मीडिया सां ॻाल्हियूं। सरदार शाह चयो त 97,000 उस्तादनि जी भर्तियुनि जो अमल 4 खां 5 सालनि ताईं हलियो। 1,00,000 खां वधीक शागिर्द यूनिवर्सिटीज़ मां डिग्रियूं हासिलु करे निकिता आहिनि। हाणे मुतालबो करे रहिया आहिनि त सभु नौकिरियूं पुराणनि उमेदवारनि खे ॾिनियूं वेंदियूं त असां काॾे वेंदासीं। फ़ैसिलो कयो आहे त नवनि उमेदवारनि खे मौक़ो मिले ऐं असांखे जंहिं उस्तादनि जी ज़रूरत आहे उहे मिलनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।